100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 मई वर्ष 2026। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय प्रातः के 5:58 और 27 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के

0: आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं प्रकृति के साथ जीवन विषय पर जय कृष्णमूर्ति के विचार।
2: देखना और सुनना जीवन की सबसे मुश्किल चीजों में से है। अगर आपकी आंखें चिंताओं से अंधी हो गई हैं, तो आप डूबते सूरज की खूबसूरती नहीं देख सकते। हम में से ज्यादातर लोगों का प्रकृति से नाता टूट गया है। सभ्यता तेजी से बड़े शहरों की ओर बढ़ रही है। हम शहरी बनते जा रहे हैं। शाम सुबह आसमान देखने के लिए भी हमारे पास बहुत कम जगह होती है, और इसलिए हम कई तरह की खूबसूरती से दूर होते जा रहे हैं। पता नहीं आपने ये गौर किया है या नहीं कि हम में से कितने कम लोग उगते या डूबते सूरज, चांद या पानी पर रोशनी के अक्स को देखते हैं। प्रकृति से नाता टूटने के कारण हम स्वाभाविक रूप से अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने लगते हैं। हम म्यूजियम जाते हैं या मनोरंजन के कई दूसरे साधन अपनाते हैं। हम बार बार दूसरों के विचारों का हवाला देते हैं और कला के बारे में बहुत सोचते और बातें करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम कला पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं? क्या ये भागने का या खुद को जगाने का कोई तरीका है? अगर आप सीधे तौर पर प्रकृति के संपर्क में हैं, अगर आप उड़ते हुए किसी पक्षी की उड़ान को देखते हैं, पहाड़ों पर पड़ती परछाइयां या किसी दूसरे इंसान के चेहरे की खूबसूरती को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी तस्वीर को देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाना चाहेंगे? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अपने आसपास की चीजों को देखना ही नहीं आता। लेखकों ने प्रकृति के साथ साथ समय बिताया है और हम दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। हम भले ही ज्ञान के पुस्तकालयों में समय बिताएं, पर जीवन की असली सुंदरता हमारे हाथों से फिसल रही होती है। प्रकृति की हर चीज में एक गहन रहस्य और आनंद छिपा होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। किसी नदी के बहाव में, किसी पेड़ की पत्तियों की हरकत में, हवाओं के संगीत में हमें जीवन की अनकही सच्चाई मिलती है। और जब हम सचमुच देखना सीखते हैं, तभी हम अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से जुड़ते हैं। ये ध्यान और सजगता का कार्य है। ये केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि मन की गहराइयों से अनुभव करना है। आज के व्यस्त जीवन में अगर हम थोड़ी देर रुकें, अपने विचारों और योजनाओं से मुक्त होकर ध्यान से आसपास की चीजों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जीवन खुद में कितना समृद्ध और सुंदर है। एक पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी में, एक फूल में या हल्की हवा में वही आनंद और शांति मिल सकती है जो किसी चित्र या संगीत में भी नहीं मिलती।
1: विचार बिंदु में अभी आपने प्रकृति के साथ जीवन विषय पर जय कृष्णमूर्ति के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

पवन सुत हनुमान की वीरता की गाथा को यदि शेष नाग के समान हजारों मुखों से भी बखान किया जाए, तब भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो अति महान और अतुलनीय कार्य श्री हनुमान जी ने किए हैं। वो अद्भुत हैं। पवनसुत हनुमान की इसी वीरता की गाथा जामवंत श्री राम को बता रहे हैं। उसी का भजन रूपी वर्णन आइए सुनते हैं किशोर यदुवंशी के स्वर में।

हे दीनदयाल, आपके भक्त आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आपसे आपके भक्तों का प्रेम वर्णन से परे है। आप अत्यंत कोमल, शांत और दयावान हैं। प्रभु, आपसे विनती है कि आप अपने भक्तों पर सर्वदा यूं ही अपनी दया रूपी छत्र छाया बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है घनश्याम वासवानी का प्रभु से दया दृष्टि बनाए रखने की विनती करता ये भजन।

भक्त के मन में यदि प्रभु का वास है तो बैकुंठ यही है। प्रभु के प्रेम रूपी वीणा पर हम राग बनकर गाएंगे और आप राग की हर धुन का स्वर बन जाना प्रभु। आप घनश्याम बनकर कारे कारे मेघ लाना और हम मोर बनकर आपके द्वार पर भक्ति रस में डूबकर नृत्य करेंगे। हमारे हृदय की ये अनमोल इच्छा को पूर्ण करना हे श्री श्याम आपका काम है। तो आइए प्रभु से करते हैं यही विनती हरिओम शरण के गाए इस भजन के माध्यम से।

सागर और अंबर का छोर अवश्य है, पर माँ की ममता का कोई छोर नहीं। माँ का दुलार उनकी हर संतान के लिए एक समान है। माँ की करुणा, माँ का असीम प्रेम सा और कुछ भी नहीं। हे माँ, अपना ये प्रेम सदैव अपनी संतानों पर बनाए रखने की कृपा कीजिएगा। माँ की ममता का सुंदर वर्णन आइए सुनते हैं शंकर महादेवन के स्वर में।

प्रभु हमारे समस्त कार्यों के कर्ता आप ही हैं। आप सब कुछ करते हैं और नाम हमारा होता है। मोह माया के इस संसार में लिप्त प्राणी आपका नाम भूल जाता है और जिसे आपके इस पावन नाम का मर्म समझ में आ जाए उसे ये संपूर्ण दुनिया पराई लगने लगती है। आपका नाम सबसे पावन और सबसे अद्भुत है मेरे प्रभु।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। देश और दुनिया के इतिहास में 26 मई क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहास के पन्नों को पलटकर आइए जानते हैं इन्हीं घटनाओं के बारे में। कार्यक्रम आज की बात में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिभा। श्रोताओं, स्विट्जरलैंड में 26 मई को खास विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में घोषित किया गया था। साल 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों, खासकर एरोस्पेस और मिसाइल तकनीक में योगदान को सम्मान देने के लिए स्विस सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन विज्ञान के महत्व, वैज्ञानिक सोच और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। युवा भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पर चलकर देश को गौरवान्वित महसूस कराएं, यही इस दिन का उद्देश्य है। श्रोताओं, श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई साल 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। करीब 3 दशक बाद किसी पार्टी ने इतना स्पष्ट बहुमत पाया था। चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया था और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह की एक विशेष बात यह भी थी कि दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसे भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। श्रोताओं, 26 मई साल 1999 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस दिन इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट PSLV-C2 के जरिए एक साथ 3 उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए थे। इनमें मुख्य उपग्रह था OSEANSAT-1 CIRS-P4, जो समुद्रों के अध्ययन के लिए बनाया गया भारत का पहला प्रमुख उपग्रह था। इसके साथ दक्षिण कोरिया का KITSAT-3 और जर्मनी का DLR टॉपसेट भी छोड़ा गया। इस मिशन की खास बात यह थी कि पहली बार था जब इसरो ने एक साथ 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए। पहली बार इसरो ने विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाया। इसी के साथ भारत ने वैश्विक कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज के क्षेत्र में भी कदम रखा। श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया में हर वर्ष 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ये मात्र स्मरण का दिन नहीं अपितु आत्मचिंतन, सम्मान और मेल मिलाप का दिन भी है। इस दिन को उन एबोरिजिनल टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के बच्चों की याद में मनाया जाता है, जिन्हें लगभग 1910 से 1970 के बीच सरकारी नीतियों के तहत उनके परिवारों से जबरन अलग किया गया था। इन बच्चों को अलग अलग संस्थानों, मिशनों या दूसरे परिवारों में भेज दिया जाता था। इसके बाद इन्हें स्टोलन जनरेशन कहा गया। नेशनल सॉरी डे की शुरुआत 26 मई साल 1998 को हुई। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 मई साल 1997 को ऑस्ट्रेलिया सरकार की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ब्रिंगिंग थीम होम जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में उन बच्चों और परिवारों की पीड़ा, अनुभवों और उनके साथ हुए अन्याय का विस्तृत दस्तावेज सामने आया था। इस दिन ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में स्मृति सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर हीलिंग,
जस्टिस और रिकंसिलाइजेशन और आपसी विश्वास की बात करते हैं। इस दिन का संदेश मात्र सॉरी कहना नहीं बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ना है। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे काश शीर्षक पर। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, काश एक छोटा सा शब्द लेकिन न जाने कितनी जिंदगियों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए। कभी न कभी ये शब्द हमारी जिंदगी में जरूर आता है। काश हमने अपने दिल का कहा सुना होता। काश हमने उस पल को भरपूर जिया होता। काश हम जो करना चाहते थे हमने वो कर लिया होता। उम्र के एक पड़ाव पर आकर ये काश अक्सर और गहरा हो जाता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, अगर उस समय अपने दिल की सुन ली होती तो क्या ये पछतावा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता? शायद नहीं। हो सकता है बहुत कुछ वैसा ही रहता जैसा आज है, लेकिन एक बदलाव जरूर आता। हमारी जिंदगी में उस काश के लिए कोई जगह नहीं होती। अक्सर हम अपनी जिंदगी की किताब का पन्ना अन्य लोगों के हिसाब से ज़्यादा और अपने विचारों की अहमियत को कम कर देते हैं। हम रुक जाते हैं ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में कई बार हम वह सब अधूरा छोड़ देते हैं जो हमारा दिल कहता है। पर सच तो यह है कि जिन चंद लोगों के कारण हम रुक जाते हैं, कुछ समय बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। पर जो याद रह जाता है वो हमारे भीतर ही रह जाता है, एक अधूरापन बनकर, एक सवाल बनकर और एक काश बनकर। इसीलिए शायद ज़िंदगी हमें बार बार मौका देती है कुछ करने का, कुछ कहने का। और इन मौक़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अगर इन पलों को जी लिया जाए तो ये याद बन जाते हैं, पछतावा नहीं। इसलिए जो आपके मन में है, जो आपको खुशी देता है, जो आपके जीवन में रंग भर देता है, उसे जी लीजिए। एक बार पीछे मुड़कर देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे काश छिपे हों, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनकही इच्छाएं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें जिन्हें आप नहीं जी पाए। अगर ऐसा है तो क्यों ना आज उन पन्नों को खोला जाए, क्यों ना अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जाए जहां आपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया था। जो काश ज़िंदगी में जुड़ गए, जो ज़िंदगी बीत गई वो लौट कर अब नहीं आएगी, लेकिन जो ज़िंदगी अभी आपके पास है वो अभी आपकी है और अभी देर नहीं हुई। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, दिमाग के घोड़ों को थोड़ी देर के लिए थाम दीजिए, बस अपने दिल की सुनिए और कर डालिए वो सब जो काश बनकर आपके भीतर बंद पड़ा है, उस किताब में जिसका नाम है काश। और अपने आप से वादा कीजिए कि अब अपनी ज़िंदगी में कोई नया काश नहीं जोड़ने देंगे, जो इच्छाएं हैं उन्हें टालेंगे नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने पंख फैलाएंगे, अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की हवा, अपने हिस्से के सपनों को पूरी शिद्दत के साथ जिएंगे, ताकि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा नहीं, चेहरे पर मुस्कान हो। इसी सोच और इसी संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम विविधा को विराम देते हैं। एक नए अंक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रतिभा को अनुमति दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते नागरिकालङ्करणसमारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्यविभूतिभ्यः पद्मपुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्मविभूषणं, षड्भ्यः पद्मभूषणं, सहैव अष्टपञ्चाशद्विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्टयोगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्रसिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषणसम्मानेन अलङ्कृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीयसारङ्गीवादकः डाक्टर् एन् राजम् अपि पद्मविभूषणसम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलङ्करणसमारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः, गजेन्द्रसिंहशेखावतः, एच् डी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम् राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपतिमहोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः।

0: विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्रिदिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मन्त्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह

0: अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम अपने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1292वीं कड़ी। अब से कुछ ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनिएगा श्रीराम चरित मानस गान पाठ का भाग 105। प्रातः 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीरज पंत का काव्य पाठ। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम अपड़, जिसमें आज चर्चा की जाएगी समस्या नहीं समाधान को खोजें विषय पर। और साथ ही इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं विषय पर राष्ट्रपति और तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित श्रीमती हेमा थलाल पिथौरागढ़ धालचूला से प्रभा पांडे की बातचीत। दिन में 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां और वैज्ञानिक खेती विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव दयाल। शाम 5:15 पर युवा दोस्त जुड़ते हैं।

अपने कार्यक्रम युववाणी से, जिसमें आज की बात होगी समय प्रबंधन है जरूरी विषय पर। और इसी कार्यक्रम में जानिएगा आज का इतिहास। संध्या 5:45 पर श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण, जिसमें आज अटल व्यो अभ्युदय योजना, पशुओं के प्रति करुणामय व्यवहार विषयों पर चर्चा की जाएगी। शाम 7 किसान भाई जुड़ेंगे अपने कार्यक्रम किसान वाणी से, जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में उपजाऊ धान का सफल उत्पादन विषय पर। इसी कार्यक्रम में जैविक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग विषय पर डॉक्टर अलंकार सिंह से भेंट वार्ता की जाएगी। भेंट करता होंगे कृष्ण सिंह लटवाल। संध्या 6:41 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। कलाकार होंगे लखवीर सिंह लखा और घनश्याम वासवानी। प्रातः 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल। और पुनः शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर। श्रोता लोकगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 7:30 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक मंजरी में, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। सुबह 11:30 पर कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों के कार्यक्रम लोकसुर में। दिन में 2 कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में। और संध्या 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैल स्वर में, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे सुरेश प्रसाद। श्रोताओं सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर समरग में, दिन में 1:15 पर और रात्रि 8 सबरस के तहत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर गीत निर्झर में। सुरबहार का समय रहेगा सुबह 10:35। सुबह 11 सैनिकों के लिए, दोपहर 12 मेरी पसंद, एक ही फनकार होगा दिन में 2:45 पर। अपराह्न 3 सदाबहार फिल्मी गीत, शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। श्रोताओं ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 105वां भाग। स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्वरी के हैं और संगीत बद्ध किया है सतीश भाटिया ने।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान पाठ का 105वां भाग सुना। संगीत बद्ध किया था सतीश भाटिया ने और स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्वरी के थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गड़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने SIR को पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई।

और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी जिले की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गढ़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब जिला स्तर पर भी अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के अनुसार कल से 29 मई तक सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र जमा होंगे। 30 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 मई को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 1 जून को सुबह 10 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। इसके बाद 9 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 11 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। तीनों निकायों के 18 वार्डों में मतदान के लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। परीक्षाफल सुधार के लिए छात्र अब 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तिथि 24 मई निर्धारित की गई थी। बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए

0: परीक्षा आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों ने अभी तक आवेदन पत्र नहीं भरे थे। कुछ विद्यालयों ने नामावली डाउनलोड न होने से छात्रों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। श्री सिमल्टी ने बताया कि सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने स्तर पर विद्यालयों को निर्देशित करने के लिए कहा गया है। नवनियुक्त गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा में न आए। आयुक्त ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, पार्किंग और ट्रैफिक समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा को व्यवस्थित बनाना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना ही सरकार की प्राथमिकता है।
1: जो चार धाम यात्रा हमारी चल रही है, इसमें आप जानते ही हैं कि ये पूरी तरह चरम पे चल रही है और 1,00,000 से अधिक यात्री एक दिन में भी आ चुके हैं। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा कर ही आए और सीधे धाम पर पहुंचने के बजाय, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है तो यहाँ की खूबसूरती को एक एक दिन रेस्ट करके देखते हुए तब केदारनाथ जी के दर्शन करें। जो श्रद्धालु पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि वो थोड़ा समय जो है प्रत्येक स्थान पर हाल्ट करें, वहाँ की खूबसूरती देखें, वहाँ घूमने फिरें। और हम लोग जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं किसी भी प्रकार से उनको असुविधा या उनको कोई भी परेशानी ना होने पाए। और मेरा ये भी आग्रह है कि सभी लोग प्रशासन जो भी निर्देश जारी करते हैं उनका अनुपालन करें।
0: पौड़ी में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में BLO, सुपरवाइजर, BLA और IT वॉलंटियरों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण, सत्यापन, प्रपत्र वितरण और ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 8 जून से शुरू किया जाएगा। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। अभियान में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता सूची में त्रुटियों के संशोधन का कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 10 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशीष भटकाई और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान सभी दलों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रशासन को सहयोग देने की अपील की गई। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने बताया कि SIR का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसके अनुरूप तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्री SIR की प्रक्रिया पहले से जारी है। प्रशासन का लक्ष्य SIR को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।
3: SIR जैसे हम जानते हैं कि अब उसका एक जो कैलेंडर है वो प्राप्त हो चुका है, तो उसमें गतिविधियां प्रारंभ होनी है। तो प्री SIR की जो गतिविधियां हैं वो आजकल चल रही हैं। मैपिंग की कार्रवाई भी गतिमान है, तो मैपिंग जो हो रही है उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी एक डिटेल बैठक की गई है, जिसमें उनको सारी बातें जो SIR के प्राविधान हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया है। और जनपद प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम करते हुए इस गतिविधि को हम सब लोग पूरा करेंगे। उसी के संबंध में आज एक वर्कशॉप की जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनके लिए रखी गई है और उनको समस्त उपबंधों से इस वर्कशॉप के माध्यम से डिटेल में अवगत भी कराया जाएगा।

0: चंपावत जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोहाघाट विकास खंड में 1 जून से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों को ब्लड टेस्ट, शुगर जांच, एक्सरे सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीमें गांव और तोकों में पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूरस्थ अस्पतालों तक ना जाना पड़े। कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को भुमलाई में शिविर का शुभारंभ होगा। इसके बाद 2 जून से 15 जून तक लोहाघाट विकास खंड के विभिन्न गांव और क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल अत्यधिक गर्मी की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून ने पत्र जारी कर सभी जिलों को सतर्क रहने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त बिजली व पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आम जनमानस से अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करने की अपील की है। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोध पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गढ़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने SIR को पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं इन्हीं के स्वरों में इस देवी गीत के साथ।

मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम।

दपे मौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और इस कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती। तो आइए सुनते हैं इनके युगल स्वरों में ये छपेली।

0: महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती के गाए इस चांचरी के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर नीरज पंत का काव्य पाठ।
1: आहटों का दरिया कहीं बह न निकले, आहटों का दरिया कहीं बह न निकले, मैंने पैरों को ही सन्नाटों से बांध दिया। एक गीत है

0: सदा में।
1: मेरा दूसरा गीत है, उससे पहले एक दो लाइनें हैं कि अब तेरे संग आखिर किस तरह हो जाऊं मैं, अब तेरे संग आखिर किस तरह हो जाऊं मैं, तू मेरी है नहीं, तू मेरी है नहीं, तेरा किस तरह हो जाऊं मैं, दिल

के जज्बातों को एहसास की गर्मी से, दिल के जज्बातों को

अभी आपने डॉक्टर नीरज पंत का काव्य पाठ सुना। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश

0: अनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देश बंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
6: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
5: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit

0: अभी आपने किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल सुना। आपके साथ तबला संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने और सारंगी पर आपका साथ दिया था सुल्तान खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग में गोंडाला रेल रोपवे में केबल कार में फंसे करीब 300 पर्यटकों के सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने संबंध में जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज

0: करने की घोषणा के बाद इसराइली सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में भी आज लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्रों, गोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों से प्राप्त आपकी ही फरमाइश के चंद गीत। आपकी फरमाइशों के खूबसूरत गीतों से सजा है ये संगीतमय सफर। इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रतिभा, और आप सभी श्रोता दोस्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुर लय ताल के इस दिलकश संगम में मेरा स्नेहिल नमस्कार कीजिए स्वीकार।

श्रोताओ, जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। खुशी और गम इसका खूबसूरत हिस्सा है, पर यह गीत है प्यार का, एहसास का, जीने की उम्मीदों का, दिलकश मुस्कान का। और इस गीत को अगर दिल से सुनना है तो दिल से निभाना पड़ेगा अपना किरदार। रोते हुए बेशक हम इस दुनिया में आए हैं, पर हंसकर जाना होगा उस पार। और जो हंसकर जिंदगी को जी गया वो ही है असली विजेता। कभी धूप की तपिश कभी छांव का सुकून है, ये जिंदगी बस इसी तरह के मौसमों का जुनून है। खुशी के पल हंसाते हैं तो गम रुलाते हैं, यही दो रंग मिलकर तो जिंदगी को मुकम्मल बनाते हैं। तो इसी मुकम्मल जिंदगी की दास्तान को कर रहे हैं पेश इस गीत के रूप में।

श्रोता, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना सौतन फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की थी, सावन कुमार के थे शब्द और उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी साथियों ने, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से थे अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते थे सोहन जोशी और पायल जोशी, मारहरा दरवाज़ा एटा से थे नबी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी, रसीद वारसी और इनका पूरा परिवार। इसी गीत के इंतज़ार में थे बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवन जी। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा ने। कुआत प्यार से थे शेख जफर हसन और नरगिश जफर। कोटारवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता थे ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से इसी गीत के इंतजार में थे प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से इसी गीत को पसंद किया था अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता थे बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि और निखिल वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा था अडार नाटघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन।

0: साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत नेचर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी साथियों की फरमाइश का नगमा। और हमारे साथी हैं मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। इसी गीत के इंतज़ार में हैं वाड़ा शहरापुर गोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, साबिर राही और मेहरा जहां। इसी गीत को सुनना चाह है सदर बाजार मालावाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा ने। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता हैं पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक। इसी गीत के इंतज़ार में हैं जोधपुर राजस्थान सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्वी। फुटानी चौक नारायण एस्टेट से इसी गीत की फरमाइश करता है ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, आराध्या और मीरा सिन्हा। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। मुंदीचिक भागलपुर से हमारे श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साहा। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आशिफ शेख। आप सभी साथियों की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं आस का पक्षी फिल्म का गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने और इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने। तो आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं ये खूबसूरत नगमा।

गीत निर्झर कार्यक्रम में अगला गीत अब हम शामिल कर रहे हैं फिल्म बेखुदी से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और आशा भोसले ने, गीत को कागज़ पर उतारा है अनवर सागर ने और गीत की धुन नदीम श्रवण ने तैयार की है और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। गांव जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता और एकांश, बदलापुर मुंबई से हमारे श्रोता है प्रणीता गुहाड़कर, सिद्धांत और टुकटुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है वैशाली शैलेश गुहाड़कर, श्वेता सुमित और ध्वनि गुहाड़कर ने। सदर बाजार कुरावली से हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जिला दुर्ग बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया इसी गीत के इंतज़ार में हैं। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा, कुश और इनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कुदाली नरेंद्र नगर आसाम से हमारे श्रोता पवन और राजेश, खमरिया छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार इसी गीत के इंतज़ार में है। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती और जानवी, काशी निवास नागपुर से हर्षल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े और इनका पूरा परिवार। तो आप सभी की फरमाइश आपके लिए कर रहे हैं पेश बेखुदी फिल्म के इस गीत के साथ।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म छबीली से। हेमंत कुमार और नूतन की आवाज़ें हैं और शब्द हैं एस रतन के, और पसंद हमारे इन सभी साथियों की है। डेर पाटन गुजरात से धीरज बीरवारी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े इसी गीत के इंतज़ार में हैं। विरमगाम जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश सनी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश

0: संग गए महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनका पूरा परिवार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। श्री गणेश अविका श्री रामपुर से इसी गीत के फरमाइश करता है। डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार कोयते वस्ती पुनावली से इसी गीत के इंतजार में हैं। अजय सोनवणे, करिश्मा, अविका और शाइशा लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद किया है। रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। छज्जर हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद साहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से इसी गीत के फरमाइश करता है जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर और मुखाइल जैनब मुजावर। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है छबीली फिल्म का ये बेहतरीन नगमा।
1: लहरों पे लहर

गीत निर्झर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं DDLJ फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, और पसंद आप सभी ने किया है। हमारे साथी हैं चांदनी चौक गंडे पटरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और सिया। जालना शहर से इसी गीत के फरमाइश करता है सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष।

चंदन एकनाथ और संगीता। मुंबई से हैं अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद किया है गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी ने। ग्राम कोरबी बेलतारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। दतरंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू और रेशमा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, साइना और निवान। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है डीडीएलजे फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से

0: केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
0: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

AIR at 90. आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर। आइए अब सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत। और इस फिल्म के गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी हमारे इन सभी श्रोता दोस्तों ने, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हीना कौसर। ये सभी श्रोता हमारे मोहल्ला हलवाई अनशेरकोट जिला बिजनौर से हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कुमार हिरड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्णा घुड़के। इसी गीत के इंतजार में हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और सौर्य ने। रामागंज खंडवा मध्य प्रदेश से इसी गीत के फरमाइश करता है विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु और पेंटर बाबू। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। दतरंगी भाट्टापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा और लोखे लाल वर्मा। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं इंदिवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा, मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने और पसंद आप सभी ने किया है। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत, कमल साहनी, ये सभी श्रोता हमारे पिंगावाला चौक गौरैया जालंधर से हैं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। वेस्ट दिल्ली तिलक नगर से हैं आरएसवीटी और आर के शुक्ला। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंद शहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। भूट चौक बुलंदशहर से हमारे श्रोता है पंकल सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह। कस्बा गुन्नौर से इस गीत को पसंद किया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान फरीन, फारिया और ताहिरा ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। इसी गीत के इंतजार में है जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शिवप्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है न्यू डेली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं कहीं दिन कहीं रात फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम गीत नेचर के समापन पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं सूरज फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोता दोस्तों ने। ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मस्ताना पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। मोरटक्का माफिज जिला खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम पटेल, शुभम देव, किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। दादा बाबू रोड गिरिडाह झारखंड से इसी गीत के इंतज़ार में है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफरा नवाज़, चाहत और सादिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ऑफिसर्स कॉलोनी अल्मोड़ा से सुशील भट्ट, पिंकी भट्ट, युवान भट्ट और प्रिशा भट्ट। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं सूरज फिल्म का ये नगमा।

सूरज फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर को संपन्न करने की दीजिए अपने दोस्त प्रतिभा को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में

0: भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रही है निर्मल उदास की गाई इस गजल के साथ।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

AIR at 90. आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और चंदन दास को।

अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की गाई इस गजल के साथ ही मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अब डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाएंगे। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के तहत डीटीएच के जरिए टेस्ट अलर्ट्स का सफल प्रसारण किया गया। प्रथम चरण में ये परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, इसलिए समय समय पर चेतावनी का आमजन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनाएगा। श्री सुमन ने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी आपदा अथवा गंभीर मौसमीय परिस्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराकर जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मीडिया सेंटर भवन हल्द्वानी का विधिवत शिलान्यास किया। 6,75,88,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाला ये मीडिया सेंटर कुमाऊं मंडल के पत्रकारों के लिए बहुउद्देश्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मीडिया सेंटर केवल एक भवन नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को समर्पित एक जीवंत मंच होगा। यह केंद्र पत्रकारों की कर्मस्थली, विचार विमर्श का संगम और जन जन की आवाज को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस भवन में आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि उत्तराखंड में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार किया जाए। सचिवालय में जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश के लिए बागवानी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कुल बागवानी क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसानों को हैंड होल्डिंग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण देने को कहा, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। सुरक्षित ईंधन, सुरक्षित जीवन अभियान के तहत पिथौरागढ़ न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला जज धनंजय चतुर्वेदी ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों से ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करते हुए वैकल्पिक परिवहन अपनाने का आह्वान किया। राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जलवायु परिवर्तन को बड़ी वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि तापमान में लगातार वृद्धि, जल स्तर में गिरावट और जमीन में नमी कम होना गंभीर चिंता का विषय है, जिसके कारण जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन मंत्री ने बताया कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की है, ताकि उनके अनुभव का उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि फायर वॉचरों को 10 लाख रुपए तक की बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जहां वनाग्नि की घटनाएं अधिक होती हैं, उन क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म के गीत। और हमारी आज की फिल्म है साल 1965 में रिलीज़ हुई हिमालय की गोद में। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर बहार में।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसे बेहतरीन निर्देशन और बेमिसाल संगीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट मूवी बनकर उभरी। 1960 के दशक में ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 20 फिल्म में शुमार रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1965 में रिलीज सुपरहिट फिल्म जिसका नाम था हिमालय की गोद में। इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में मनोज कुमार और माला सिन्हा नज़र आए और सहायक भूमिका में नज़र आई शशिकला। ये फिल्म दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि फिर इसके बाद तेलुगु में डॉक्टर बाबू और तमिल में पूतिया भूमि के नाम से इसे रीमेक किया गया। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी का सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, हिमालय की गोद में फिल्म के अगर संगीत की बात करें तो सभी गीत उत्कृष्ट थे और इन्हें खूबसूरती में पिरोया संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने, और इनकी सहायता की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के सभी गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, इंदिवर ने और कमर जलालाबादी ने, और बेहतरीन आवाज़ों से नवाजा था इन गीतों को लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और उषा टिमथी ने। इस फिल्म के गीतों को काफ़ी पसंद किया गया और इसका क्रेडिट जाता है इन सभी मंझे हुए कलाकारों को। तो इनकी कला का बेहतरीन नमूना है इस फिल्म के सभी गीत। तो आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, बात करें हिमालय की गोद में फिल्म की कहानी की, तो कहानी में डॉक्टर सुनील मेहरा यानी मनोज कुमार एक डॉक्टर हैं जिनका सपना है कि वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल सही तरीके से करें। फिल्म की शुरुआत होती है एक हवाई जहाज की यात्रा के साथ, जहां सुनील एक

वो पैसेंजर को दिल का दौरा पड़ने पर जहाज को उतारने को कहता है और पहुंचता है एक गांव में, जहां कुछ गुंडों से उसका सामना होता है। ये वो गांव है जो मेडिकल में विश्वास नहीं रखता, विश्वास रखता है तो झाड़ फूक और अंधविश्वास में। यहीं मनोज कुमार की मुलाकात फुलवा यानी माला सिन्हा से होती है। तकरार से शुरू हुआ ये रिश्ता प्रेम के परवान चढ़ने लगता है और अब ये दोनों मिलकर गांव के अंधविश्वासों और जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं और बस यहीं से शुरू होता है संघर्षों का सफ़र। और इसी सफ़र से जुड़ा एक नगमा अब हम आपके सामने कर रहे हैं पेश।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म हिमालय की गोद में के कुछ नगमे।

श्रोताओं, हिमालय की गोद में फिल्म में फुलवा हर कदम पर सुनील का साथ देती है। प्रेम और संघर्ष से सुनील गांव वालों का दिल जीत लेता है। लोगों को समझाता है कि बीमारी का इलाज दवा और देखरेख से होता है, डर और अंधविश्वास के साथ नहीं। प्रेम की जीत होती है। फिल्म ये खूबसूरत

संदेश देती है कि सच्ची सेवा, प्रेम और शिक्षा मिलकर ही एक अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं। ये बस एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल पेश करती कहानी है, जहां हिमालय की दिलकश वादियों में प्रेम और इंसानियत एक साथ पनपते हैं।

हिमालय की गोद में फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरभाय संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे चंद नए फिल्मी नगमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त प्रतिभा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म हम हिंदुस्तानी से। मुकेश और साथियों की आवाज़ें थी, प्रेम धवन के शब्द थे और उषा खन्ना का था संगीत। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा और मदन मोहन के संगीत से सजा सजा वीर ज़ारा फिल्म का ये नगमा।

सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने। जयदीप सहारी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है सलीम सुलेमान ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए सुनते हैं फना मूवी का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर और काजोल ने। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

AIR at 90. सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में दबंग फिल्म का गीत। इस गीत को कागज़ पर उतारा है जलीस शेरवानी ने और संगीत बद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

सैनिक भाइयों दबंग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए को संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। सैनिक भाइयों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माहेश्वरी बिष्ट के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

सुनो, इश्क, मोहब्बत, प्यार और रिश्तों के खूबसूरत ताने बानों से सजी कहानियाँ अगर किसी ने बड़े पर्दे पर सबसे जुदा अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पेश की हैं, तो वो हैं जाने माने मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता करण जौहर।

तो श्रोताओं, करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ। उनके पिता बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर हैं। उनकी मां का नाम हीरू जौहर है। उनकी शिक्षा की बात करें तो हाई स्कूल उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया और फिर उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली। पहले मुंबई के ग्रीन लांस से उन्होंने इस हाई स्कूल की परीक्षा दी और उसके बाद एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने फ्रेंच में मास्टर्स डिग्री हासिल की। और फिल्मी माहौल तो उन्हें बचपन से ही मिला। जब वो मात्र 17 साल के थे तभी उन्होंने साल 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक इंद्रधनुष में श्रीकांत का किरदार निभाया था। फिर फिल्मी दुनिया की शुरुआत उन्होंने जाने माने निर्देशक निर्माता आदित्य चोपड़ा के सह निर्देशक के तौर पर उन्होंने काम किया और वो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के दोस्त का कैमियो रोल भी निभाया था।

तो श्रोताओं, बतौर स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर साल 1998 में करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने कई पुरस्कार अपने नाम किए और व्यावसायिक तौर पर भी ये फिल्म शानदार रही और करण जौहर को पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, साल 1998 में जहां कुछ होता है फिल्म ने धमाल मचाया। इसके बाद साल 2001 में करण जौहर की एक और बेहद कामयाब फिल्म प्रदर्शित हुई, कभी खुशी कभी गम। ये भी मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन जैसे कलाकार शामिल थे।

श्रोताओं, एक दौर ऐसा भी था जब यूं तो करण जौहर को लगातार सफलता मिल रही थी और उस दौर में वो न्यूमरोलॉजी पर बहुत विश्वास करते थे और उस दौर में उनकी जितनी भी फिल्में आईं वो के अक्षर से ही प्रारंभ उनका हुआ और ये फिल्में उनके लिए लकी साबित हुई। इसी वजह से वो सोचने लगे कि फिल्मों में उन्हें सफलता मिल रही है और उन्होंने के से यानी क से जितनी भी फिल्में हैं अपनी फिल्मों का नाम रखना शुरू किया। और उस दौर में बॉलीवुड में भी कई ऐसे सितारे और फिल्म मेकर थे जो न्यूमरोलॉजी को मानते थे और नामों की स्पेलिंग तक बदल दिया करते थे, लेकिन करण जौहर की सोच तब बदली जब उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने राजकुमार हिरानी की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी, जिसमें न्यूमरोलॉजी का जो इस में बताया गया था कि इससे कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में सबसे पहले आपका काम और आपका विश्वास आपको ज़िंदगी में सफलता दिलाता है। इसके बाद उन्होंने के यानी क अक्षर को अलविदा कहा और जो उनकी शुरुआत की फिल्में थी जैसे कभी खुशी कभी गम कभी अलविदा ना कहना कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों के अक्षर के नाम को छोड़कर अन्य अक्षरों से फिल्मों की शुरुआत की। बहरहाल कभी अलविदा ना कहना फिल्म भी उनकी बेहद कामयाब फिल्मों में से एक है।

तो के अक्षर से जब उनका मोह टूटा, भ्रम टूटा, तो फिर उन्होंने साल 2009 में एक बेहद कामयाब और फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था माय नेम इज़ खान। और इस फिल्म में उनके बहुत ख़ास दोस्त

काजोल और शाहरुख खान को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। ये फिल्म भी उनकी बेहद सफलतम फिल्मों में से एक मानी जाती है।

शायद कम लोगों को पता हो कि करण जौहर को फैशन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में भी बहुत दिलचस्पी रही है, और वो कई फिल्मों में कलाकारों के कपड़ों को लेकर सुझाव देते रहे हैं, और बतौर उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में भी उन फिल्मों में काम किया, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डुप्लीकेट मोहब्बतें, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, मैं हूँ ना जैसी कई फिल्मों में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की है। मोहब्बतें फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर साल 2001 में इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

करण जौहर की ज़िंदगी में एक बहुत दुख का समय तब आया जब साल 2004 में उनके पिता यश जौहर इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिता के जाने के बाद करण जौहर ने अकेले ही धर्मा प्रोडक्शन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के तौर पर ये प्रोडक्शन हाउस जाना जाता है।

जाने माने स्टार्स के बच्चों को फिल्मों में डेब्यू देने में बेहद माहिर रहे हैं करण जौहर। ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर को लेकर उन्होंने धड़क बनाई और अनन्या पांडे को लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू और साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर लेकर वो एक नई फिल्म को लेकर आई जिसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा ये नए चेहरे आए और इन्हें लेकर इन्होंने फिल्में बनाने का जो गौरव है वो करण जौहर को जाता है।

करण जौहर की निर्माता निर्देशक के तौर पर एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। कुछ फिल्मों के नाम बता दें, कभी अलविदा ना कहना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, माय नेम इज़ खान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, शेरशाह, दोस्ताना, अग्निपथ, ब्रह्मास्त्र, राजी, कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, अग्निपथ, ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, निर्देशन भी किया।

करण जौहर को अपनी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, निर्माण और कहानी लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार साल 1999 में कुछ कुछ होता है के लिए उन्हें मिला। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार मिला और कभी खुशी कभी गम सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार मिला 2002 में। 2011 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला माय नेम इज़ खान के लिए। आइफा अवार्ड्स के लिए मोहब्बते के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कभी खुशी कभी गम के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद, कल हो ना हो के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी, माय नेम इज़ खान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और साल 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया। तो करण जौहर ने सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है।

तो सुदाम फिल्म मेकर करण जौहर ग्लैमर वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ में से एक माने जाते हैं। उन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। हालांकि एक्टिंग में खास उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में वो बेहद सफल रहे और छोटे पर्दे पर भी एंकर के तौर पर, जज के तौर पर भी वो समय समय पर नज़र आते रहे हैं।

तो श्रोताओं, हम यही कामना करते हैं कि करण जौहर आगे भी कई फिल्मों का निर्माण करें, निर्देशन करें, कहानी लिखें और अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम अर्पण।

स्वागत छ अपू सबनक कार्यक्रम अर्पण में। कार्यक्रम सुनने सवैदी पैनिन के प्रभा पांडे नमस्कार। देखो खत्म है अपू और हमारे इंतजारी और हमें पूछना आज अपना कार्यक्रम लिए। आज हम दगड़ियों कार्यक्रम में बातचीत अपू दगड़ कर रहे हैं, चर्चा कुछ नई सही दगा और विखर दगड़ में करी जाल अपू सवैदी भाई ने मनोरंजन और सुनाई जाल कुमाऊनी की। और विखर दगड़ में आज हम अपू लगी ले रहे हैं क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता

देखिए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं विषय पर राष्ट्रपति और तेलू रौतेली सम्मान है सम्मानित श्रीमती हेमा थलाल पिथौरागढ़ धारचूल लगा करी गई यो हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत। बिगड़ियो यो जीवन छे और जीवन में कत के प्रकार समस्याओं ने परेशानियों ने जनर हमन के समाधान करण बहुत जरूरी हूँ न कि उन्हें घबरान। लिपणियों जियो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव सुख दुख हमेशा आते रहने, लेकिन हम अगर इन्हों सही ढंगल इन्हों समाधान करूँ इनको देखूँ तो हम जीवन में सफल रह सकूँ। क्योंकि जो ये समस्या होनी इन्हों समाधान करण बहुत जरूरी हो। यो कब तक नन नन जस होनी तो कब तक मन ठुल ठुल, तो समस्याओं समाधान करवे आहिल बढ़ जान दगड़िए जीवन छ। जीवन में होने वाली समस्या हमन को मजबूत ले पड़ो। यह जीवन का हमारे एक हिस्से छे और हमन के मजबूत पड़ोनी और हमारे व्यक्तित्व के लिए निखारनी। अब ये समस्या जो छे कत को प्रकार ले सकनी दिद्वणियों, जैसे कि व्यक्तिगत है गए सामाजिक आर्थिक शैक्षिक और कत को प्रकार के हो सकनी, लेकिन उन्हन के नज़रअंदाज करवे वी है डरण या वी है भजन यो सही नाती। यह जी दिद्वणीय जीवन छे तो जो ना समस्या हमारे जीवन में है वी जड़ तक जान बहुत जरूरी छो। वी बात से दगाड़ में दगाड़ियो धैर्य और संयम, धैर्य और संयम दगाड़ सही ढंग योजना बढ़े वे वी समाधान करना जरूरी छे। जीवनक अनुभव है सिकण और सकारात्मक सोच धरण बहुत जरूरी हो। कभता समस्या नन नन जस होनी तो वी समाधान ले जल्दी है जांच, लेकिन कत कह इतुक ज्यादा उलझी रहने की एक लंब बखत तक हमन का इंतजार करब। हर समस्या के एक सीमित अवधि है, हर कुनिनों की हर पहाड़े एक चोटी है, हर घाटी एक अंत हो। ठीक ये सच हर चीज़ कहीं ना कहीं अंत तय छे। तो जो चीज़ प्रारंभ है ये अंत ल होल, जो समस्या आ रहा है वो दूर ल होल। यानी कि यह हमन के कभी नहीं सोचन चाहिए कि समस्या पूरा तरीकल हमन को तोड़ सके या हमन को ख़त्म कर सके। हर समस्या अस्थायी है, उनको अस्थायी तरीके ले लीवर मन में उम्मीद धरन चाहिए कि यह समस्या ले जल्दी हल हो जाए। क्योंकि हर समस्या में जरूरी छू सकारात्मक संभावना, हर सिक्का दी पहले होने। तो ये एक लीजिए जो समस्या छू वी समाधान ले भी पछिल जरूर हो। दगड़ समस्या कभी तय नहीं करें कि हमन दगड़ की होल, बल्कि यो हमन के तय करें पड़ोल कि समस्या के दूर करवे हम कसिक आखिल के बढ़ सकें। तो ये एक लीजिए दगड़ी कभी ले कोई ले समस्या हो वी समाधान निकायबे जीवन में आखिल बन हमन के बहुत जरूरी छू। और ये हमन के सोचो चूँकि हम परिस्थिति लगा कसे निपटो। हमेशा दगड़ियो परेशान रहे दुखी रहे हम अपन जीवन गए निरस नहीं करो, बल्कि हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए हर उस समस्या है निपटने का हम कोशिश करो। यह कह लीजिए दगड़ियो कुनी ना कि समस्या पर ना बल्कि हम यह बात समस्या का समाधान कसी हो यह बात पर हमन का ध्यान देना चाहिए। दगड़ियो बातचीत कार्यक्रम में और लापू दगा अखिल के होते रहो, लेकिन पहली बार नो मणि अखिल के और कन्नू आपू मनोरंजन सुनो योगी।

0: स्वागत छू आबू सब नक एक बार फिर यह कार्यक्रम में दीवान कनवा जी न गई यह गीता बात आप कार्यक्रम में मणि अखिल के वर्णों और क्षणों क्षेत्र संकलित बातचीत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं विषय पर राष्ट्रपति और तेलू रौतेली सम्मान है सम्मानित श्रीमती हेमा थलाल पिथौरागढ़ धारचूला दगड़ करी गई यह हमें क्षेत्र संकलित बातचीत जात पर ओ अपन पछाण बनो लाग रहे आज हर जात में हमारी त्रिवेणी पुरुष है पछड़ने थी महिला कभी ना आज चांद पर तो कभी आसमान पर उड़ान भरते हुए हमन के देखने लाग रहे और दगड़ में अपो देश अपो राज्य अपो शहर नाम ने रोशन करने लाग दिद्वणियों गाँव हो या शहर आज हर जगह पर हमारी त्रिवेणियों ने अपन पछाण बने रखे और वो घर है बेहद जय बिल्ले आज वो काम करने लाग रही घर परिवार जतु भल ढंग देखभाल करनी विकत दगड़ दगड़े वहाँ पर घर एक आर्थिक स्थिति के लिए संभालनी और अपन घर एक आर्थिक स्थिति के मजबूत करना के लिए अखिल कवानी आत्मनिर्भर बनानी आज दिन कोई लयस जाग नातीन जहाँ हमारी बहन न पहुँच रहा हर क्षेत्र में आज उनूल अपन पहचान बनाए रखी जब घर है बहर हम जानो तो फिर चाहे स्कूल हो कॉलेज हो या नौकरी पेशा हो या हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हर महिला जब घर है बहर निकले तो वहाँ हिम्मत दगड़ और अपन मन में ठान भरू बहर निकले और जो जाग पर उजे वहाँ अपन पहचान बने तो आज हम कार्यक्रम में जैसे एक महिला रगर बातचीत करूँ जनूल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं अपन एक बहुत योगदान अपने देने लाग रही और दगड़ में हूँ वर्तमान वक्त में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जिला संयोजिका पद पर कार्यरत छन जिनका नाम छू श्रीमती हेमा थलाल जो कि हमारे पिथौरागढ़ जिले में रोनी तो आज हम आपको कार्यक्रम में इनन दगा बातचीत करनो तो सबने पहले तो हेमा दी बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपको हमारे कार्यक्रम अपन में
1: आपन बहुत बहुत धन्यवाद
0: दीदी हम कार्यक्रम में आपको दगर बातचीत तो आपको यह काम बार में कर ली लेकिन भी है पहली फल यह कार्यक्रम माध्यम हम आपको बार में जान जानो
1: सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद धारचूला बैठे निवासी हेमा थलाल लंबा समय बैठे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम करने लग रही हूँ बचपन बैठे ये काम में थी काम करने को इच्छा मन में जागरूक थी और मैं ज्ञान संस्कृति पुस्तकालय बैठे जुड़ी हूँ और वर्तमान में जिला संयोजिका पिथौरागढ़ बैठे काम करने मरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर
0: हेमा थलाल छन जो वर्तमान वक्त में ज्ञान संस्कृत पुस्तकालय संस्था में कार्यरत छन और आप बात करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बारे में जब आप जिला संयोजिका पद पर छा तो कसे का आपको मन में यह विचार रहा की आपको यह क्षेत्र ये अभियान में काम करने से
1: 2011 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना फिर समाज स्तर में जो लिए काम करना होते हो तो मैं सर यो मन में लागने भी कि स्त्री होना उल हर कोई दबाव साथ है जबकि मैं पढ़ी लिखी हर चीज में सबल थी लेकिन एक पॉइंट ले थोड़ा कमजोर हो गए थे तो हर आदमी इससे सोचने भी हमारे पहले काम करा हमेशा झुक बैठ रहे तो मेरे मन में ये विचार आते कि अगर मैं पढ़ी लिखी होना ले मैं सही तो दबान चान मरियान था जो स्त्री बिचारी जो समाज में बिल्कुल पढ़ी लिखी न होने ना वो क्या स्थिति रहती होगी यो मन में विचार आ तब बैठे मैं यो काम करना शुरू कर जहाँ जहाँ एकल महिला हो परित्यक्ता हो और विवाद हो घर बैठे निकाली ना हो जे जे समस्या मेरे सामने में आया जय जय मैं फोन कर बुला था या समस्या रख मैं हर वर्ग की महिला तल्ली मल्ली है मल्ली हर वर्ग की महिला एक मेल मदद करने पूरी है पूरी कोशिश कर आलिए वो कोशिश जारी छ पिथौरागढ़ जनपद है वो थो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 4000 तो मैं हस्ताक्षर अभियान चला था
0: अच्छा हस्ताक्षर अभियान के फिर
1: हस्ताक्षर अभियान जैसे हर व्यक्ति का बीच चावर क्योंकि उतनी हमारे बहुत संकट
0: अच्छा।
1: और जनपद उनका अपेक्षा हमारे पिथौरागढ़ जनपद में बेटियों की आंकड़ा बहुत कम हो गए थे तब हर व्यक्ति का बीच जाब है हर कैसे हस्ताक्षर उनका माध्यम कि आप बेटी उनको संरक्षण करेंगे बेटी को बचाएंगे घर में 50,000 तो मैं साइन कराया जो भ्रूण हत्या विषय थे अनेक अच्छे अच्छे पदों में कार्यरत जो व्यक्ति थे उनके बीच जाब रिक्वेस्ट कर बता ये हमारी समस्या था उन्होंने हमन बहुत सपोर्ट कर उनके आशीर्वाद आज जनपद में लिंगपाद अगिल के बढ़ रहा है
0: दीदी आपूल बता कि आपू हमारे हर कमजोर महिला दगर आपूल उन्हें मदद कर चा ये जब आप मदद कर चा मदद करने आपू तरीके हो
1: मदद करना तरीका भी हो जैसे गरीब महिलाएं जन कहले एकल बना हलियो समाज चलना है। हम की करनू जैसे समाज का अच्छे अच्छे लोग उनका बीच जावे सामूहिक रूप बैठे कहले उन फर्नीचर दियो कहा कह बैठ स्कूल में उन्होंने नौकरी दिलान और अलग अलग घर में बैठे सामान लियान LPG पंचायत थ्रू हमने सिलेंडर दिला तरह तरह की समान जतु उन्होंने जरूरत एक चीज हो ची सारी जरूरत एक चीज हम उन्हें पूर्ति करनो चाहे उन्हें उन दागड़ा बच्चा ले क्या ना हो उन बच्चा पढ़ने लिखने तक का हम शिक्षा का तहत ले जा बैठ उन्हें फ्री शिक्षा ले करवानो।
0: तो आप बहुत है बढ़िया बात दीदी आप कहे जमीनी स्तर पर जो भी हिमा दी आप काम का कारण लाग रहा था। तो दीदी जब हम कोई काम करनो देख लीजिए हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होने चाहिए और हम पास बखतला होने चाहिए तो यह सब चीजें व्यवस्था आपको कैसे कर
1: आर्थिक स्थिति बैठे मैं बहुत पिछड़ी समझ लिया मैं बहुत कमजोर हूँ लेकिन मैं समाज बीच में परमात्मा ईश्वर की कृपा है जाए ले जानू निको काम करनू भल काम करनू हर वर्ग को व्यक्ति में से सपोर्ट कर चा कुछ व्यक्ति हुनान जो दबाने कोशिश करना लेकिन उससे बढ़कर व्यक्ति मेरे पास ऑटोमेटिक ही परमात्मा में एक सवाल रखनू कि फलानो आ रहे इस हो रहे उनर परिवार में ये दिक्कत छ तलाक शुदा छ या परित्यक्ता छ या घर का लोग उसे एक्सेप्ट न करनो मरियान जिले में बतको रखनू जहाँ जहाँ मैं लास्ट तक बात रखियान हर व्यक्ति इतु भलले आदिम छन समाज में आदि में खोजने की जरूरत छ कि एक कदम आप बढ़ाओ दूसरा कदम अपने आप मिल जाता है।
0: जब अपुल यह सब काम अपुल शुरू करो तो यह पीछा कारण की रोज
1: मैडम कारण बस यही थी कि जब मैं पढ़ी लिखी ना तिरबल में और मैं सब दबाने लिखा समाजल कतन कतन कोशिश कर चरित्र में हनन का आरोप लगा च दिमागी रूप में मेंटल बनाने कोशिश कर तब मैं सोच कि जो स्त्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं न होली जो समाज में एकदम नया नया उपाय गाज गिरी ना होलो वो बिचारी से दबाने लिखा समाज कतु प्रकार व्यक्ति होना तो उन्हें मैं क्यों ना आवाज बनू ताकि एक प्रेरणा जाए कि सब कुछ महिला कर सकती हर क्षेत्र में कर सकती लेकिन विचारधारा हमारे शुद्ध होनी चाहिए परमात्मा अभी बाट बना दीजिए इस उद्देश्य मेरे यो कार्य कर।
0: बहुत बढ़िया बात दीदी आप कह बिल्कुल अलग तरीका काम आपको करण लाग रचा आपको घर परिवार व्यस्त कैसे कर चा आप बता की आपको इकल मैच जमा आपको तीन चेली ने जिम्मेदारी आप उस पास छे तो आपको घर परिवार जी बखत कैसे दिखाओ चा कैसे आपको घर परिवार व्यवस्था कर चा कैसे आपको आर्थिक स्थिति के संभाल
1: आर्थिक स्थिति संभालना की मेरा बहुत सारा काम छन उन्हीं कामों का बीच में मैं उन कामों की टिप्पणी जो महिला बेरोजगार हो ची उन्होंने ले दी छू ब्यूटी पार्लरों काम छ कोई महिला आ गया तो मैं उन्होंने ब्यूटी पार्लरों काम ले सिखा हलनू सिलाई कढ़ाई ले सिखा हलनू और स्कूलों का माध्यम स्कूलों ले लगा हलनू नाना ना NGO में ले उन्होंने लगानो और अपनो दिखा के कि मैं इस काम करनो तो तुम भी ऐसा कहो करो सक्षम बनो मैं उन्होंने काम एक प्रेरणा ले दिनो और अपने आजीविका और उनके व्यवस्था मैं बढ़िया ढंगल कर ली नू क्योंकि मैंने कहा मन मैं सच्ची लगन होनी चाहिए तो ऑटोमेटिक ही कार्य बन जाता।
0: आप बता कि आप जिला संयोजक का तो आप छाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तहत आप बता हमन के कि आप ज्ञान संस्कृत पुस्तकालय नामक जो संस्था छो उमल आप कार्यरत छा हेमाती जो है ज्ञान संस्कृत पुस्तकालय छे यह संस्था तो यह संस्था के काम करे
1: यह संस्था जैसे हम साहित्य कर्मी छू साहित्य का गोष्ठी हुनान हर मंथली जो समाज कुरीतियां छन उन कुरीतियों को उलट रखी जाता अपना अपना स्तर अगर कोई समय दी सकता तो मैं काम कर सा कोई न दी सकता कोई बार न साहित्य को कार्यक्रम करियो लेकिन जैसे मैं जसन जो हमेशा समाज से के न के दिन चाहू चाहे वृक्षारोपण का रूप में हो साहित्य का रूप में हो स्वच्छता का रूप में हो नशा मुक्ति का रूप में हो गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के संबंध में जेले हो राष्ट्र संबंधी जेले कार्य हम उन मिल लो हम बढ़ चढ़ कर उमें भाग ले लो जैसे एक जैसे हम कैसे श्रद्धांजलि दिनों श्रद्धांजलि दिना को तरीका मेरे यूज है मैं एक पेड़ लगाऊ लो वो पेड़ ऐसा चाने खिले जान छो की मेरे पेड़ कतु ठुलो हो रहा है मैं श्रद्धांजलि दी छ क्या सच्ची में मेरे लगाई ना रोग ठुलो हो रहा है तो हम इस तरीके समाज काम करना में जी जान लगावा काम करना
0: और पानी दिक्कत हम देख लो हर जगह तो फिर इमा आपू संस्था के तरीके काम करे
1: गाँव गाँव जाबा हम जो हमारे पुराने दिनों का नौला था नौला सुखन मरियान उन नौलान की सफाई करने प्रधान उन दागड़ा अपील करनो और उनका अगिल बगल लिए ले जिनका बीच में पानी अवेलेबल हो उन वृक्ष लगाने लिखा गुहार करनो अपना और बैठे वन विभाग टीम बैठे कारा कार्यक्रम हम गाँव गाँव जाबे जहाँ जहाँ नाला छन धारा छन हमारे कुआ छन हम वहाँ वहाँ जाबे यो कार्यक्रम बीच बीच में करते रहन
0: कतो सफल हो या वर्तमान वक्त में जो आप काम करन लागे छ
1: सफलता अचल जो छ हमारे गांव में प्रधान बहुत बढ़िया हो गया उनन के बीच हम जहाँ जहाँ बात रखनो तो अपना अपना स्तर उन प्रधान लोग ले हमार मदद करना जो सुकिना नौलत है उन तक ले खुल गया और उन्होंने पता चल गया कि यो हमार धरोहर छ हमने बचाउन छ आज नए तक भल भल नए तो पुरखिन हमार पीढ़ी जो बाजार जा रहे वो पीढ़ी कभी न कभी गांव तरफ आल और वो चीजें उन्हें जरूरत पड़े तो उनने जागरूक हो गया तो थोड़ा कोशिश करना पड़ती जान पड़ता समय लगान पड़ता हर जान खर्चान भी हो परेशान आदमी जरूर हो सके लेकिन बात रखता तो अगलो व्यक्ति जरूर सुन सके वो बात हमने तो अपनी जिंदगी जी गया लेकिन आने वाले बच्चान के लिए काम की राख जान मरे इसी माध्यम से हमारा काम हो जाता
0: तो हमारी आप जो यो ज्ञान संस्कृत पुस्तकालय नाम एक संस्था छो इमें और के काम आपको कर
1: ठुल कुरुति हो रहा जो नाना बच्चा ना हमारे राष्ट्र के धरोहर छन उन धरोहर समाज बिगाड़ना का तरीके जानना तो हम अचल उन बच्चान में फोकस करना मरा चान को जुट मिल जा उन बच्चा नशा पान धूम्रपान में लाग रहना तो हम नाटकीय तरीका से साहित्यकारों की भूमिका से अलग अलग तरीका उन्होंने समझाने को उन्होंने दिमागी तौर बढ़िया से बढ़िया बात समझाने की कोशिश करना तो कई बच्चा उमा बैठे सुधर ले जाना क्योंकि टीन एज हो ची 13-14 साल बच्चा सन उन बच्चा एल बहुत मार्गदर्शन है जरूरत है चानों की मैं ही समाज हर महिला अपना अपना स्तर यू न सोचे कि पड़ोसी को बच्चा था या तीसरा को बच्चा था आदमी यू सोचे कि वो मेरे ही बच्चा था वो सुधर लो तो मेरे बच्चा ले सुधर लो वो बिगड़ो लो मेरे देश ले बिगड़ो लो राज्य ले बिगड़ो लो वो मेरे समाज को हित
0: तो दीदी मैं आपको एक बात और जान चाहू जब मैंने बातचीत करी तो आप बता के आपको तिली रो तिली पुरस्कार है आपको सम्मानित और आपको LPG पंचायत नामक सम्मान है आपको सम्मानित करो तो के कार्य क्षेत्र आपको जहाँ आपको पुरस्कार मिली।

0: सोनिया सुल्तान भी दी। तो ये एक लीजिए दी थी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं विषय पर राष्ट्रपति और तेलू रौतेली सम्मान है सम्मानित श्रीमती हेमा थलाल पिथौरागढ़ धारचुलदगढ़ करी गई यह क्षेत्र संकलित बातचीत अल्लाह हम सुने। अब कार्यक्रम में मन अगिल का वर्णों आप दगा करनो बातचीत यानी अल्पसंख्यकों लिजी बड़ी योजना रोजगार गारंटी योजना। देखो सरकार द्वारा कत को आज योजना चलाई जान लग रही जमें कि समाज हर वर्ग सशक्त हो और वो अखिल का बड़ो और वो योजनाओं लाभ ले सको। हमारी सरकार यह योजना चलने तरफ कार्यरत छी और दगा में अल्पसंख्यक वर्ग के सशक्त बवना प्रयास करी जान लग रही ताकि सबनक विकास है सको। तो यह लीजिए कब का रोजगार संबंधी योजना चल रही जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मैं गरीबों लीजिए रोजगार मजदूरी योजना छे ताकि तय काम लगा लगा है तय मजदूरी उनको मिल सको ताकि उनके रोजगार और आजीविका अवसर प्रदान करी जा सको और उन्हें अपन जीवन स्तर के बहुत बढ़ा सको और एक सभ्य और सशक्त समाज निर्माण कर सको। अब कार्यक्रम में हमारा जिनके वर्णों कन्नू मनोरंजन और सुनो योगी।

0: अभी मैंने सुन रही थी अर्पण, हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई।

जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा मजबूत। आप टीवी स्क्रीन पर भी दिखेंगे आपदा संबंधी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रविंद्र सिंह, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अब डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाएंगे। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के तहत डीटीएच के जरिए टेस्ट अलर्ट का सफल प्रसारण किया गया। पहले चरण में यह परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में किया गया। एक रिपोर्ट। परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रमुख प्लेटफॉर्म पर टीवी स्क्रीन पर टेस्ट अलर्ट संदेश प्रदर्शित हुआ। यह संदेश लगभग 15 से 40 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाई दिया। इस प्रणाली के माध्यम से आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों का कुछ ही सेकंड में व्यापक स्तर पर प्रसारण संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे संदेश दिखाई देने से लोगों का तत्काल ध्यान आकर्षित होगा। इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और लू जैसी घटनाओं से पहले लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, इसलिए समय पर चेतावनी का आम जन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी आपदा या गंभीर मौसम की स्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराकर जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने 5 से 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत विश्वास, विकास और जन कल्याण का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी नेता जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां को गिनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसको लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
1: मोदी जी 12 वर्ष जो है 5 जून से जो हमने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वृक्षारोपण कार्य होंगे, सेवा के कार्य होंगे, लोगों के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठियां होंगी, अलग अलग प्रकार के जो है 25 जून तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं, और एक सुशासन दिवस के रूप में भी कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो जो काम देश के हित में किए हैं, उनके जो है गांव गांव तक उनको पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, और एक पूरे देश में एक बड़ा व्यापक अभियान इस पर चला जा रहा है।
0: देहरादून के नए जिलाधिकारी के रूप में डॉक्टर आशीष चौहान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने कोषागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कोषागार में सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित संरक्षण करने और डिजिटल माध्यम से पेंशनरों का सत्यापन कराने पर जोर दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही चारधाम यात्रा प्रबंधन को सशक्त बनाना, आपदा प्रबंधन के कार्यों को समयबद्ध पूरा करना और जनपद की विकास योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। छतीना क्षेत्र के जंगल में कल रात अचानक आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आग लगने के पीछे अराजक तत्वों की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि यदि जंगलों के आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या प्रशासन को दें ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
3: ठीक है, 4-5 दिनों से तापमान में अचानक अत्यधिक वृद्धि के कारण थोड़ा सा जंगलों की जो आग है वो वास्तव में उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ी हुई है। लेकिन बागेश्वर वन प्रभाग के सभी क्रू स्टेशन, हमारे बागेश्वर रेंज के क्रू स्टेशन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जहाँ पर हम है ये छतीना कंपाउंड नंबर 3 है और इसमें भी कल रात अचानक आग भड़क गई थी, तो रात में ही हम लोगों ने इसको नियंत्रण तो कर लिया था, लेकिन कहीं पर फिर रात में जो है आपका लाइन फटने से आज सुबह फिर लगभग जो है थोड़ा बहुत एरिया में हमारा ये आग फैली हुई थी। तो अभी हमारी टीम ने इसको नियंत्रित कर लिया है और ग्रामीणों से भी हमारी अपील है कि इस भीषण गर्मी में इस प्रकार की आग लगाने की पुनरावृत्ति को न अपनाएं और वन विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है अपराधियों को पकड़ने की।
0: शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 मई से 21 जून एक माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए एक माह तक विशेष निशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया है। छात्राओं को प्रतिदिन सामान्य योगाभ्यास के साथ साथ विभिन्न रोगों के उपचार के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आसन, भुजंगासन आदि योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। योग विज्ञान विभाग के प्रधान योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी ने बताया कि योग शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया भी जा रहा है।
4: नमामि गंगे व शोभन सिंह जी ने विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलते आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं। जहां केवल अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहाँ के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
0: वहीं छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्य ने कहा कि योग शिविर से विभिन्न योगिक क्रियाओं को जानने के

0: बाद वे अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।
1: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
2: हमारे वहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है, जिससे कई सारी रोग नष्ट होते हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द। इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
0: देहरादून के डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नागल बुलंदावाला के किशनपुर ग्रांट में नए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। ग्राम प्रधान अंजू लोधी ने कहा कि नए केंद्र के शुरू होने से बच्चों और महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा और ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भवन न होने से बच्चों को परेशानी होती थी, लेकिन अब उनके लिए स्थायी भवन उपलब्ध हो गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख डोईवाला गौरव सिंह ने कहा कि यहां आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहा था, अब भवन बनने से यहां बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा मजबूत, अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखेंगे आपदा संबंधी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं नसीम अजमेरी के कलाम से, आवाज मिताली सिंह की। बहुत हसीन है दिन, रात खूबसूरत है।

बहुत हसीन है दिन रात खूबसूरत है, तुम्हारे शहर की हर बात खूबसूरत है। मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: शुरू में संदेश से पहले सुदर्शन फाकिर का कलाम आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। फिर आज मुझे तुमको बस इतना ही बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। सच में जिंदगी कुछ ऐसी ही है। और अब सुगम संगीत का समापन कर रहे हैं अनवर और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में एक गीत के साथ। गीतकार हैं महबूब।

तो श्रोता, महबूब मेरे एल्बम से ये आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और अनवर की। गीत गुलशन कुमार का था और इसी गीत के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1292।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग।

0: कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
0: जी।
1: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
0: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
0: जी।
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां

0: स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are

0: This was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय!
6: वीर जोरावर की
7: जय!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
5: बिल्कुल,
9: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
5: जी मंत्री जी।
9: जी महाराज।

0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
2: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
0: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: John Armand! What how? Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kaayro ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauja!
2: Huzoor!
0: बांधो इस बच्चे को संजीव से
2: जी
3: हाँ छोड़ो मुझे
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे मुझसे हाथ हटाओ मैंने कहा छोड़ो मुझे हटो यहाँ से
0: शाबाश शाबाश सारल जंग मैं खुश हुआ तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर
1: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है लानत है तुम पर सालार जंग लानत है लालच में तुम इतने गिर जाओगे हम

0: 내 쏘잖아다.
1: 어지아우! 대차로이스코!
2: 쇼로 무제!
1: 대차로!
2: 아, 대차로! 쇼로 무제!
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
6: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
6: ये नामुमकिन है।
5: वाय?
6: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
6: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: एक्चुअली यू आर अ फूल।
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
6: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
7: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। आज आपने सुनी कड़ी संख्या 1272। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ। गायिका हैं संगीता ढोडियाल।

और अब उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत से। गायिका है बसंती बिष्ट।

0: बसंती बिष्ट के गाय सी गढ़वाली लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली

0: दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है।

0: या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिव दयाल।
1: किसान भाइयों, सोयाबीन एक दलहनी फसल है, लेकिन तिलहनी फसलों में भी सोयाबीन का एक विशेष स्थान है। सोयाबीन में 20% तेल व 40% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोयाबीन एक श्रेष्ठ एवं सस्ता स्रोत है, क्योंकि 1 किलोग्राम सोयाबीन से उतनी ही प्रोटीन प्राप्त होती है जितने की 12 किलोग्राम दूध या 3.5 किलोग्राम अंडे या 2 किलोग्राम मांस या 6 किलोग्राम चावल से प्राप्त होती है। उत्तराखंड में सोयाबीन खरीफ की मुख्य तिलहनी फसल है, लेकिन सोयाबीन की उत्पादन क्षमता का 50% उपज भी किसान भाई नहीं ले पाते, जिसका मुख्य कारण उसकी खेती वैज्ञानिक विधि से नहीं करना है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की पैदावार वृद्धि में प्रजातियों का विशेष महत्व होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कई प्रजातियों का विकास किया गया है। शिलाजीत, BL-SOYA 2, BL-SOYA 21, BL-SOYA 47, BL-SOYA 59 एवं BL-SOYA 63 निचले एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एवं उनसे लगभग 45 से 55 किलोग्राम प्रति नाली उपज प्राप्त हो सकती है। प्रजाति BL-SOYA 47, BL-SOYA 59 एवं BL-SOYA 63 जीवाणु स्पाट अवरोधी किस्में हैं। इसके अतिरिक्त PS-1024, PS-1042 एवं PS-1092 प्रजातियों से लगभग 60 किलोग्राम

प्रति नाली उपज प्राप्त हो सकती है तथा ये प्रजातियां पीला चितवर्ण एवं जीवाणु स्पाट अवरोधी भी हैं। 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए PRS 1 प्रजाति उपयुक्त है। यह लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा औसत उत्पादन 40 किलोग्राम प्रति नाली है। किसान भाइयों, पर्वतीय क्षेत्रों में काला सोयाबीन, जिसको स्थानीय भाषा में भट्ट कहते हैं, की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। स्थानीय प्रजाति का उत्पादन कम होता है। BL सोया भट्ट 65 प्रजाति विकसित हुई है, जिसका दाना काला, गोल एवं उत्पादकता 22 से 28 किलोग्राम प्रति नाली है। यह लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन डोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसको समतल एवं भुरभुरा बना देना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई का उपयुक्त समय मई के अंतिम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक है। विलंब से बुआई करने से उपज कम मिलती है। बुआई के लिए बीज की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति नाली पर्याप्त होता है। बीज जनित रोगों से बचाव हेतु सोयाबीन बीज को 2 ग्राम थीरम 75 WP तथा 1 ग्राम कार्बनडाजिम 50 WP को मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। सोयाबीन दलहनी फसल होने के कारण इसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, जिससे वायुमंडलीय नत्रजन उपलब्ध हो सके। इसके लिए लगभग 250 मिलीलीटर साफ एवं ठंडे पानी में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का घोल बनाकर इस मिश्रण को 30 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर हल्की परत बन जाए। इसके बाद बीज को 10 से 15 मिनट छाया में सुखाकर बुआई करें। तेज धूप में बीज को उपचार एवं सुखाना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवाणु के मरने की आशंका रहती है। ऐसे खेतों में जहां सोयाबीन की खेती पहली बार अथवा काफ़ी समय बाद की जा रही हो, वहां राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि फफूंदी नाशक दवा तथा राइजोबियम कल्चर को एक साथ मिलाकर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले फफूंदी नाशक से उसके बाद राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। बीज की बुआई हल के पीछे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लाइन से करें तथा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जमने के पश्चात 15 से 20 दिन के अंदर घने पौधों को निकालकर पौधों की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। फसल की भरपूर पैदावार के लिए उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। उर्वरकों को मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। यदि यह परीक्षण न कराया गया हो तो उन्नतशील प्रजातियों के लिए 400 ग्राम नत्रजन, 1600 ग्राम फास्फोरस तथा 800 ग्राम पोटास प्रति नाली प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा अंतिम जुताई में हल के पीछे कुणों में प्रयोग करें। बोने के 30 से 35 दिन बाद सोयाबीन के 1 या 2 पौधों को उखाड़ कर देखें कि जड़ों में ग्रंथियां बनी हैं या नहीं। यदि ग्रंथियां नहीं पड़ी हैं तो फूल आने के पूर्व 600 ग्राम नत्रजन प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। लगभग 2 कुंटल सड़ी गोबर की खाद डालने से जड़ों में ग्रंथियां अच्छी बनती हैं तथा उपज भी अच्छी मिलती है। जिन खेतों में जस्टे की कमी हो, वहां पर 100 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति नाली डालना चाहिए। सोयाबीन की अधिक उपज के लिए 500 ग्राम सल्फर प्रति नाली डालना चाहिए। सोयाबीन खरीफ फसल होने के कारण खरपतवार का नियंत्रण जरूरी है। उसके लिए बुआई से 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई अवश्य कर देनी चाहिए। उसके बाद 45 से 50 दिन बाद दूसरी निराई करनी चाहिए। खरपतवार नाशी रसायन एलाक्लोर 50 EC की 40 मिलीलीटर या मेटाक्लोर 50 EC की 20 ग्राम दवा प्रति नाली की दर से 16 से 20 लीटर पानी में घोलकर बुआई से 48 घंटे के भीतर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना हो

0: तो क्यूजोला फास इथाइल 5 EC की 1 ग्राम दवा 16 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। वर्षा ना हो तो फूल आने और फली बनते समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई अवश्य करें, साथ ही उचित जल निकास का प्रबंधन करना भी आवश्यक है। किसान भाइयों, अधिक पैदावार हेतु कीटों एवं बीमारियों का निदान भी आवश्यक है। सोयाबीन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट पत्ती काटने वाला कमला कीट है। इसके शरीर पर पीले या भूरे रंग के रोएं होते हैं। इसका प्रकोप जुलाई अगस्त माह में अधिकतम होता है। प्रारंभ में जब ये पत्तियों को खाती हैं तो सूढ़ियों सहित प्रभावित पौधे या पत्तियों को सावधानी से अलग कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके रोकथाम हेतु लेमडा साई हेलोथ्रीन 5 EC की 5 मिलीलीटर दवा या ट्राइजोफास 40 EC की 15 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छेदक मक्खी 70 से 80% एवं गार्डिल बीटल 10 से 30% तक तने के भीतर खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके नियंत्रण हेतु एंडोस्का कार्ब 15.8 EC की 7 मिलीलीटर या साइपरमेथ्रिन 10 EC की 10 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन में कई बीमारियों का प्रकोप भी होता है। प्रारंभ में बीज विगलन एवं पौध अंगमारी रोग फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बचाव हेतु बुआई पूर्व बीज शोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीला मोजेक एवं पर्णचित्ती नामक बीमारियां भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। पीला मोजेक बीमारी सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलती है। इसके नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3 G की 1 किलोग्राम दवा प्रति नाली की दर से खेत में मिलाएं। पर्णचित्ती रोग में पत्तियों एवं दूसरे बाहरी भागों पर बैंगनी भूरे किनारे वाले असंख्य धब्बे बन जाते हैं तथा अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां समय से पूर्व ही गिर जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु सहनशील किस्मों का प्रयोग करें तथा फफूंदी नाशक थायराम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए एवं पत्तियों पर 20 ग्राम कार्बंडाजीम या 40 ग्राम मैंकोजेब का 20 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु जनित रोगों में पत्तियों पर आल्पिन के सिर के बराबर 1 मिलीमीटर के पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 30 ग्राम एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन फसल की कटाई बहुत ही उपयुक्त समय पर करनी चाहिए क्योंकि देर करने पर फलियां चटकने लगती हैं और जल्दी करने पर दाने सिकुड़ जाते हैं तथा हरे रह जाते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर गिर जाएं एवं तने में केवल फलियां रह जाएं तो पौधों को जमीन की सतह से काटकर 2 से 3 दिनों पौधों को खेत में ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद पौधों को सूखे स्थान पर ढेर लगाकर मड़ाई करें। मड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दाने चटकने नहीं चाहिए, उससे जमाव प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस प्रकार उपयुक्त किस्मों एवं वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके एक नाली में सोयाबीन फसल की 45 से 55 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिव दयाल से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे खेल पत्रिका कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुने।

जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, रात 10 बजे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। संध्या 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सुरेश प्रसाद। संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा समय प्रबंधन है जरूरी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम सुनिएगा, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे अटल वयो अभ्युदय योजना और पशुओं के प्रति करुणामय व्यवहार। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा। आज कलाकार होंगे लखबीर सिंह लखा और घनश्याम वासवानी। संध्या 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में उपराऊ धान का सफल उत्पादन। शाम 7:40 पर फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। रात 9:15 पर इंद्रधनुष में भी आप फिल्म संगीत सुन सकेंगे। सुगम संगीत हम लेकर आएंगे सबरस में रात 8:00 और रात 9:30 पर गजनों का साप्ताहिक फरमाइशी प्रोग्राम पेश किया जाएगा महफिल। ये थे हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रुतों सुरीले मनभावन मनमोहक मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत से सजे गीतों का जब भी जिक्र होता है फिल्मी दुनिया में, तो हमें याद आते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इस जोड़ी को हम आज ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं, क्योंकि इस जोड़ी में से एक लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर की कल यानी 25 मई को पुण्यतिथि थे। तो आज इन्हीं के, यूं तो इस जोड़ी की यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे चंद फिल्मी नगमों को हम आपको सुनवाएंगे एक ही फनकार में। और फिल्मी दुनिया के बेमिसाल बेहतरीन नगमों का जब भी जिक्र होता है तो इस जोड़ी के सुरमई गानों की बात ज़रूर होती है। और जैसा कि मैंने बताया, आज इस जोड़ी में से एक लक्ष्मीकांत एक ही फनकार के फनकार हैं। तो श्रोताओं, लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर, इस नाम से लक्ष्मीकांत जी को जाना जाता था। हिंदी सिनेमा के, जैसा कि मैंने बताया, ये जाने माने संगीतकार रहे। और यूं तो जैसे मैंने बताया कि प्यारेलाल के बिना इस जोड़ी की कल्पना नहीं की जा सकती, तो इस जोड़ी की यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर इस जोड़ी के सुरीले गीत कई सारे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इनका जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ और 9 साल के जब वो थे तो उनके पिता इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए, जिस कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी। और बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत जी का रुझान संगीत की ओर था और वो अपनी ज़िंदगी में संगीतकार ही बनना चाहते थे और यही उन्होंने किया भी।

तो श्रोताओं, लक्ष्मीकांत जी ने संगीत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की थी और इस बीच घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत जी ने संगीत समारोहों में प्रतिभाग करना शुरू किया। आगे चलकर वाद्य यंत्र मैंडोलियन बजाने की शिक्षा उन्होंने बालमुकुंद इंदौरकर से प्राप्त की और अपने जोड़ीदार प्यारेलाल के साथ संगीतकार की जोड़ी बनाकर फिल्म जगत में संगीत का उन्होंने लोहा मनवाया। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के, जो कि मशहूर संगीतकार रहे उस दौर में, उनके सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया और इस संगीतकार जोड़ी यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत की इस जोड़ी को संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री ने उन्हें अपनी क्लासिकल फिल्म पारस मणि में काम करने का सुनहरा अवसर दिया और इस फिल्म ने इस जोड़ी की संगीत को लोगों तक इस कदर पहुंचाया कि इस जोड़ी की तकदीर बदल गई और फिर पीछे मुड़कर देखने का इन्हें मौका ही नहीं मिला।

तो श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन गाने दिए, जिनमें कुछ गानों का जिक्र अगर हम करें तो सावन का महीना, पवन करे शोर, मिलन फिल्म से शागिर्द का दिल विल प्यार व्यार, बिंदिया चमकेगी दो रास्ते, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई मार गई, डफली वाले, सरगम, हीरो, तू मेरा हीरो है, यशोदा का नंदलाला, संजोग, चिट्ठी आई है, नाम, तेजाब 1 2 3, खलनायक फिल्म के गाने, इसके अलावा मिलन, शागिर्द, इंतकाम, दो रास्ते, हीरो जैसे कई फिल्में हैं जिसमें बतौर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कई बेहतरीन नगमों की सौगात दी। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन इस जोड़ी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के बेहतरीन गानों को आज भी हम सुनते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं।

तो श्रोताओं, एक ही फनकार फन संगीत का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज के फनकार थे जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अंजुपांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के अभिनेताओं का जब भी जिक्र होता है तो सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी अपने सौम्य सरल व्यक्तित्व से हमेशा दर्शकों को बहुत लुभाया है, उनके अभिनय से सजी फिल्में दर्शकों ने बेहद सराही हैं। क्योंकि उनके अभिनय क्षमता की बात करें, उनकी प्रतिभा की बात करें, तो वो अपने आप में बेमिसाल कमाल के थे। और वो थे जाने माने मशहूर अभिनेता सुनील दत्त।

तो श्रोताओं, सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम ज़िले के खुर्दे गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। उन्हें बचपन से ही अभिनय का बड़ा ही शौक था और इसी क्षेत्र में वो भविष्य में जाना भी चाहते थे। बलराज साहनी उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्हें सुनील दत्त बहुत पसंद करते थे, और ये देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले आए और यहाँ पर अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में वो वहाँ पर रहते थे, और कुछ समय वहाँ रहने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई माया नगरी की ओर चले गए।

तो सुनो, जब मुंबई पहुंचे सुनील दत्त तो उन्होंने वहां पर अपनी जिंदगी की शुरुआत मुंबई परिवहन सेवा के बस डिपो में एक चेकिंग क्लर्क के रूप में किया, जहां उनको 120 रुपए प्रति माह मिला करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए साल 1955 से 1957 तक उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, खूब मेहनत किया। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वो ज़मीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे थे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर स्नातक पूरा किया और सुनील दत्त वहाँ रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा में उद्घोषक के तौर पर भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जहाँ पर फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू वो लिया करते थे और एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपए मिला करते थे। ये दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी।

सुधों धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा और उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत की बात करें तो उन्हें पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म साल 1955 में मिली और इसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कोई ख़ास पहचान नहीं मिली लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए और इन फिल्मों में भी उन्हें ख़ास सफलता नहीं मिली। फिर आई साल 1957 में बेहद चर्चित फिल्म मदर इंडिया। इस फिल्म में सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में ख़ास पहचान और लोकप्रियता मिली और इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गाँव में सामाजिक व्यवस्था से

नाराज है और इसी वजह से विद्रोह कर वो डाकू बन जाता है और साहूकार से बदला लेने के लिए वो उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है। लेकिन इस कोशिश में अंत में वो अपनी माँ के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार उन्होंने निभाया, लेकिन दर्शकों के दिलों में उन्होंने बेहद सकारात्मक जगह अपने लिए बनाई।

श्रोताओं, सो ये सुनील दत्त से जुड़ी बात मदर इंडिया फिल्म के लिए ये भी कही जाती है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आग की दुर्घटना घटी थी, जिसमें नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने बचाया था। और इसके बाद जब फिल्म इतनी हिट रही और नरगिस दत्त भी स्वस्थ हुई, तो उन्होंने दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। और साल 1958 में सुनील दत्त की जीवन संगिनी बनी नरगिस।

सुनील दत्त की जिंदगी में एक और सुपरहिट फिल्म आई साल 1965 में, वक्त। और इस फिल्म में यूं तो एक से बढ़कर एक नामी गिरामी कलाकार थे, बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर, रहमान जैसे सितारे इस फिल्म में थे। इन सब के बावजूद सुनील दत्त ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में वो सफल रहे और उनके सिने करियर में ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ।

और श्रोताओं, इसी साल मेहरबान और मिलन जैसी सुपर हिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सुनील दत्त के नए रूप को देखने का दर्शकों को मौका मिला।

सुधो, सुनील दत्त ने जहाँ कई फिल्मों में काम किया, वहीं कई मल्टी स्टारर फिल्मों का भी वो अहम हिस्सा रहे। और उनकी मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय जैसी कई फिल्में शामिल हैं।

श्रोताओं, साल 1993 में प्रदर्शित फिल्म क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्षों तक अभिनय से दूर रहे। फिर वो विधु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर साल 2007 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नजर आए। फिल्म में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त, जो कि उनके पुत्र हैं, इसी फिल्म में अपने पुत्र के ही पिता की उन्होंने भूमिका निभाई और पिता पुत्र के इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त दोनों ने साथ काम किया, पर

इसी फिल्म में अपने पुत्र के ही पिता की उन्होंने भूमिका निभाई और पिता पुत्र के इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त दोनों ने साथ काम किया, पर वो किसी भी दृश्य में साथ नहीं आए। रॉकी उन्होंने अपने बेटे यानी संजय दत्त के लिए इस फिल्म का निर्माण किया था।

मौजूदा फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं तो सुनील दत्त ने निभाई, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने फिल्मों के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश लिया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के वो सदस्य बने और उनको कई पुरस्कारों सम्मानों से भी अलंकृत किया गया। साल 1963 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मुझे जीने दो फिल्म के लिए उन्हें मिला और साल 1965 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार खानदान फिल्म के लिए मिला। 1968 में पद्मश्री से वो नवाजे गए। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1995 में उन्हें मिला। 1997 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें मिला। 2001 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2005 में दादा साहब फाल्के इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त 25 मई 2005 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए और अपनी एक से एक पढ़कर जिन्होंने फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाई उनके जरिए हो या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए उनका सरल और प्रभावशाली व्यक्तित्व हमेशा दर्शकों के जहन में बना रहे।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, अब आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 मेगाहर्ट्ज पर FM बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की, बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित

0: 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। शैलेश्वर कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है सुरेश प्रसाद का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

सुरेश प्रसाद का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत शैल स्वर कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आपने सुना। प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायं 6:50 पर और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद सायं 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा, समय प्रबंधन है जरूरी। उत्तरायण कार्यक्रम में सायं 5:45 पर सुनिएगा अटल वयो अभ्युदय योजना और पशुओं के प्रति करुणामय व्यवहार विषय पर चर्चाएं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में लखवीर सिंह लखा और घनश्याम वासवानी की गायी भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सायं 6:41 पर और शाम को 7 बजे आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में उपराऊ धान का सफल उत्पादन विषय पर आज की बातें। साथ ही इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय रहेगा जैविक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। और भेंट कर्ता के साथ ये भेंट वार्ता डॉक्टर अलंकार सिंह से आप सुन सकते हैं। सबरस कार्यक्रम रात्रि 8 बजे होगा। फिल्म संगीत सायं 7:40 पर हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत एक बार पुनः सुना जा सकता है इंद्रधनुष के तहत रात्रि 9:15 पर और अपनी फरमाइश की गजलें आप सुनेंगे महफिल कार्यक्रम में आज रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। नजर डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर।

प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर, विचार बिंदु प्रातः 6:05 पर। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जवाहरलाल नेहरू के विचार, और प्रातः 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। आज की बात हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:40 पर। देश गान का समय रहेगा प्रातः 6:45। विविधा कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान पाठ हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:10 पर। लोकमंजरी में प्रातः 7:30 पर सुनिएगा शिरोमणि भतरौजी के गाये कुमाऊनी लोकगीत। शास्त्रीय संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं प्रातः 8:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर होगा प्रातः 9:05 पर। सबरंग कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा प्रातः 10:05 पर। सुरबहार कार्यक्रम होगा प्रातः 10:35 पर। फौजी भाई सैनिकों के लिए फिल्म संगीत सुनेंगे प्रातः 11:00 और लोक सुर कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 11:30 पर। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में सबको नहीं स्वयं को खुश रखें विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी, और साथ ही इस कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी रसोई से

इस कार्यक्रम में ही श्रीमती पूर्णा पंत तिवारी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला। मेरी पसंद के तहत फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा दोपहर 12 बजे, सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर, दोपहर 1:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1293वीं कड़ी। उत्तराखंड के लोकगीत दोपहर 2 बजे सुनवाए जाएंगे और खेती की बातें कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बीज शोधन क्यों आवश्यक विषय पर जानकारी, और जानकारी देंगे श्री BD पांडे।

दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार के तहत आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं और फिल्म संगीत एक बार पुनः सुना जा सकता है अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीतों में। सायंकालीन सभा में कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सायं 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और सायं 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून से रिले किए जाएंगे। सायंकालीन सभा के आरंभ में सायं 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कल की कलाकार होंगी विमला रावत। युवानी कार्यक्रम में कल सायं 5:15 पर सुनिएगा संपूर्ण शहरी रोजगार योजना विषय पर आज की बात। साथ ही इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे साइंस का संसार। उत्तरायण कार्यक्रम सायं 5:45 पर होगा। इस कार्यक्रम में मादक पदार्थों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय योजना विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। भक्ति संगीत में जगजीत सिंह और इंदर बावरा की गाई भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे सायं 6:41 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम में कल सायं 7 बजे पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन से लाभ विषय पर आज की बातें होंगी। फिल्म संगीत सायं 7:40 पर होगा। लोक गाथा क्रम में लोक गाथा नल दमयंती का 10वां भाग हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 8 बजे और रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। खोया हुआ धन पाया जा सकता है, मगर बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। आज का युवा सपने तो बड़े देखता है, मगर कई बार सही समय प्रबंधन ना होने के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीज़ों में इतना समय निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। दोस्तों, समय प्रबंधन केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को समय से और सही तरीके से पूरा करना है, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि सफलता एक दिन अचानक से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको समय प्रबंधन और आज के युवा को लेकर हमारी युवा साथी गीतांजलि के साथ हुई ये भेंट वार्ता। बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि आपका हमारे कार्यक्रम युवाणी में। तो गीतांजलि, इससे पहले हम कार्यक्रम में आगे

0: बड़े, आप हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
1: जी नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं यही अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ।
0: जी गीतांजलि, बिल्कुल सही। तो गीतांजलि, आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज का युवा जो है वो समय का सही उपयोग कर रहा है या नहीं कर पा रहा है?
1: हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सच है कि आज का जो युवा है वो प्रतिभाशाली तो है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन युवाओं का ध्यान भटका देते हैं। कई बार युवा ज़रूरी काम छोड़कर घंटों स्क्रीन पर बिताते रहते हैं और बाद में तनाव महसूस करते हैं। हालांकि हर युवा ऐसा नहीं है, बहुत से युवा जो हैं अपने समय का सही उपयोग करते हैं, पढ़ाई, करियर और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। और असल समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाना है। अगर युवा अपने दिन का सही प्लान करें और अपने गोल को स्पष्ट रखें तो वे अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय वही है जो सभी को बराबर मिलता है और फर्क इतना ही है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
0: जी गीतांजलि, आपने बहुत ही सही बात कही है। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, जो काम ज़रूरी है हम उसे पहले करें। और दूसरी बात, समय सभी के पास बराबर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं। गीतांजलि, अब ये बताइए कि मोबाइल और सोशल मीडिया टाइम मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, मोबाइल आज ज़रूरत है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी। देखिए, सोशल मीडिया ने जानकारी को आसान बनाया है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग ने जो है युवाओं को काफ़ी बहुत बर्बाद किया हुआ है। कई युवा सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इससे पढ़ाई, नींद और मानसिक शांति पर भी असर पड़ता है। धीरे धीरे फोकस कमज़ोर होने लगता है और काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर मोबाइल का इस्तेमाल सीमित और सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो वही मोबाइल सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। इसलिए ज़रूरत है तो मोबाइल छोड़ने की नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करने की, क्योंकि जब इंसान अपने समय का सही कंट्रोल नहीं करता तभी समय उसे पीछे छोड़ देता है।
0: जी गीतांजलि, बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान अपने समय की कद्र नहीं करते हैं, जब वो अपने समय को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयोग नहीं करते हैं तो समय उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। साथ ही गीतांजलि, ये भी बताइए कि आजकल युवाओं में चीज़ों को टालने की आदत जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। आजकल हम लोग कोई भी काम करने की सोचते हैं तो उससे पहले ये सोच लेते हैं कि अभी ये ज़रूरी नहीं है तो इसे कल करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका इसके प्रति क्या रवैया है?
1: देखिए, आज के समय में युवाओं पर कंपटीशन और प्रेशर दोनों बहुत बढ़ गए हैं, तो कई बार असफलता का डर या काम के प्रति रुचि ना होना भी हमारी टालम टोल की आदत बना देता है। कुछ युवा सोचते हैं कि अभी बहुत समय है और इसी सोच में ज़रूरी काम टलते जाते हैं। मोबाइल और मनोरंजन की आसान उपलब्धता भी इसका बड़ा कारण है। धीरे धीरे ये आदत आत्मविश्वास को कमज़ोर करने लगती है और जब काम आखिरी समय पर होता है तो तनाव और घबराहट दोनों ही बढ़ जाती है। इस आदत से बचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समय पर छोटे काम पूरे करते हैं तो बड़े लक्ष्य भी आसान लगने लगते हैं। याद रखिए, सफलता इंतज़ार करने वालों को नहीं, समय पर मेहनत करने वालों को मिलती है।
0: जी गीतांजलि, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्या आपको कभी लगा है कि आप अपने काम को टाल रही हैं और आप इस आदत से कैसे उभरती हैं?
1: जी हाँ, एज अ यूथ मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो या कॉलेज एग्ज़ाम्स हो और मेरे कोई भी काम हो तो मैं भी बहुत बार उन्हें टालने की सोचती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम पे जब मैं उन्हें करने की सोचती हूँ तो मेरे पर बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मैं अब अपनी कोशिश ये रखती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे कामों को पूरा करूँ और उनसे भागने की कोशिश ना करूँ।
0: जी गीतांजलि, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है कि हम लोग अपने काम को समय से पूरा कर लें, ताकि जब उनकी लास्ट डेट आए तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन ना हो और हम उन्हें इजीली पूरा कर सकें। साथ ही गीतांजलि, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए, एक विद्यार्थी के जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको क्या लगता है टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है?
1: देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ाई, रिवीजन, रेस्ट और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं वे कम तनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट से अनुशासन तो आता ही है और साथ ही साथ हमारा

0: कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे पढ़ाई आखिरी समय तक टलती नहीं है और तैयारी भी हमारी मजबूत रहती है। हर काम के लिए निश्चित समय तय करने से दिमाग भी फोकस रहता है। और सिर्फ लंबे समय तक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समय का सही उपयोग करने वाला विद्यार्थी ही भविष्य में सफल इंसान बनता
1: है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारे पास हर काम को करने के लिए ज़्यादा समय बचता है। देखो, आज के जो युवा हैं वो टाइम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आप अपने टाइम को कैसे बेहतर बनाती हैं? आपके कोई विचार हैं इसको लेकर?
0: देखिए, सबसे पहले युवाओं को अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। जब हमारा लक्ष्य साफ होता है तब समय की कीमत खुद हमें समझ आने लगती है। दिन की प्लानिंग करना और ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। तो मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए हम थोड़ा सीमित टाइम दे तो सही है, और हर काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की आदत हमें डालनी चाहिए। साथ ही पर्याप्त नींद और मानसिक शांति भी ज़रूरी है, क्योंकि थका हुआ मन

0: जाने लगती है। दिन की प्लानिंग करना और ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। तो मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए हम थोड़ा सीमित टाइम दे तो सही है, और हर काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की आदत हमें डालनी चाहिए। साथ ही पर्याप्त नींद और मानसिक शांति भी ज़रूरी है, क्योंकि थका हुआ मन समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है और छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाते हैं। अगर युवा आज समय की कदर करना सीख जाए तो कल सफलता खुद उनके पीछे आएगी, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, इसलिए सही समय पर सही कदम उठाना ही समझदारी है।
1: जी गीतांजलि, बिल्कुल सही बातें आपने कही हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गीतांजलि आपका कि आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक व्यक्ति विशेष की ओर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उर्दू शायरी की दुनिया के एक ऐसे शायर की, जिन्होंने अपने शब्दों से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध उर्दू शायर शफीक जौनपुरी की। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 मई साल 1902 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, उनका वास्तविक नाम वलीउद्दीन सिद्दीकी था। शफीक जौनपुरी की कविताएं उनके समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों का प्रतिबिंब है। ये न केवल उनकी नज्मों में बल्कि उनकी गजलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, उन्होंने शास्त्रीय भाषा का प्रयोग समकालीन चिंताओं को व्यक्त करने के लिए किया, जिसने उनकी कविता को एक सम्मानजनक आयाम दिया और कवि के रूप में उनकी लोकप्रियता का कारण बना। उन्होंने अपनी शायरी में प्रेम, इंसानियत और जीवन की सच्चाइयों को बेहद खूबसूरती से पेश किया। उनकी भाषा सरल होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली थी। दोस्तों, उनकी खास बात ये है कि उन्होंने पारंपरिक उर्दू शायरी को आधुनिक सोच के साथ जोड़ा। कई आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने कभी भी साहित्य का दामन नहीं छोड़ा। दोस्तों, शफीक जौनपुरी का एक प्रसिद्ध शेर है, इश्क की इब्तिदा तो जानते हैं, इश्क की इंतहा नहीं मालूम। दर दर की ठोकरों ने शरफ को मिटा दिया, कुदरत ने क्यों गरीब को इंसान बना दिया। दोस्तों, ये शेर आज भी लोगों की जुबा पर रहता है। उनकी रचनाओं में मोहब्बत के साथ जीवन का गहरा अनुभव दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध गजलों में शामिल है, जिंदगी तुझसे हमें अब कोई शिकवा ही नहीं, ऐसी नींद आई कि फिर मौत को प्यार आ ही गया, कली पर मुस्कुराहट आज भी मालूम होती है, और कई सारे शेर हैं। दोस्तों, शफीक जौनपुरी केवल एक शायर नहीं थे बल्कि समाज की भावनाओं को शब्द देने वाले संवेदनशील कलाकार थे। 5 मार्च वर्ष 1963 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। चलिए दोस्तों, ये तो थी कुछ सूक्ष्म जानकारी शफीक जौनपुरी को लेकर। अब

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की ओर और डालते हैं नज़र आज यानी 26 मई को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने ईरान के नादर शाह के साथ एक समझौते के तहत अफगानिस्तान को भारत से अलग किया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1926 में लेबनान ने संविधान अपनाया था। वर्ष 1957 में आज के दिन बम्बई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वर्ष 1969 में आज के दिन अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सकुशल लौटे थे। वर्ष 1973 में आज ही के दिन बहरीन ने अपना संविधान अपनाया था। दोस्तों, वर्ष 1987 में आज ही के दिन श्रीलंका ने जाफना में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। आज ही के दिन वर्ष 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। दोस्तों, वर्ष 2000 में आज ही के दिन हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसके लड़ाके दक्षिण लेबनान से चले जाएंगे। वर्ष 2014 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 2020 में आज ही के दिन मिजोरम ने खेल गतिविधियों के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया था। इसके साथ ही मिजोरम ये करने वाला देश का पहला राज्य बना था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2021 में भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, एक नज़र आज वे मुख्य व्यक्तियों के जन्म तथा निधन पर। वर्ष 1912 में आज के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1946 में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ अरुणा रॉय का जन्म हुआ था। वर्ष 1983 में आज के दिन बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहले पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1986 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। साथ ही बताते हैं सही उत्तर देने वाले हमारे सभी साथियों का नाम। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, भारत तथा कुछ अन्य देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है 24 मई को भारत तथा कुछ अन्य देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है कबीर रेडियो श्रोता संघ टोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, डॉक्टर दिनेश काले जी। ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बीबी आराध्या साहू। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और निगहत परवीन अब्बासी, एसएम जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहले पहलवान कौन थे? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है उत्तरायण कार्यक्रम।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आप सभी लोग न कार्यक्रम में। कार्यक्रम में रोजे की चार आप लोगों दगड़ बातचीत करुल, आप लोगों के जानकारी दिल और दगड़ में आप लोगों मनोरंजन ल करुल कुमाऊनी और गढ़वल लोकगीतों दगड़। श्रोताओं आज कार्यक्रम में सबू है पहली बात करनू अटल वयो अभ्युदय योजना की। श्रोताओं यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई हुई एक योजना छू और भारत सरकारक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपन सब नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बढ़ोने की दिशा में काम करने लाग रहो और अटल वयो अभ्युदय योजना उस दिशा में एक कदम छू। श्रोताओं अटल वयो अभ्युदय योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना छू जैक उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों के सशक्त बढ़ोन छू। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों द्वारा समाज में करी हुई अमूल्य योगदान के मान्यता दिए और उनर कल्याण और सामाजिक समावेश के सुनिश्चित करें। श्रोताओं सरकारक लक्ष्य समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान के मान्यता दिवे उनके सशक्त बढ़ोनक दगड़ दगड़ उनर उत्थान करण ले छू। जेल जीवनक सभी पहलुओं में उनरी सक्रिय भागीदारी और समावेश सुनिश्चित है सको। अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों विशेष रूपल गरीब वरिष्ठ नागरिकों जीवन की गुणवत्ता में सुधार लियोनक लीजी बुनियादी सुविधा दिबेर वरिष्ठ नागरिकों दगड़ उनरी सतत देखभालक लीजी पात्र संगठनों के वित्तीय सहायता प्रदान करें। श्रोताओं यह योजना के अंतर्गत क्वेल विकलांगता या दुर्बलता वटी पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिकों के सहायक जीवन उपकरण ले प्रदान करी जानी। श्रोताओं अगर बात करी जाओ यह योजना का लाभ लेने के बारे में तो गरीबी रेखा है तली यानी कि बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के और 15,000 रुपए प्रति माह तक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के यह योजना लाभ दिए यानी कि बीपीएल परिवारक वरिष्ठ नागरिक और 15,000 रुपए प्रति माह तक आय वाले वरिष्ठ नागरिक यह योजना का लाभ ली सकनी। श्रोताओं अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकारे प्रतिबद्धता एक प्रमाण छू। यह उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति उनर स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक जरूरतों के संबोधित करण उनके सशक्त बढ़ोन और समाज में उन्हें सक्रिय भागीदारी और समावेश के सुनिश्चित करण छू। यह योजना के माध्यम सरकार एक यश वातावरण बढ़ोनक प्रयास करने जैल वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रक लिजी अपन अमूल्य योगदान के स्वीकार करते हुए सम्मान और संतुष्टि अपन जीवन यापन कर सको। तो श्रोताओं अगर अपन लोगों के आसपास ले कोई यस वरिष्ठ नागरिक हैं जो बीपीएल परिवारों में उन्हीं या फिर जनर आय 15,000 रुपए हैबेर

15,000 रुपए तक एक छू प्रति माह, तो आपू लोग उन्हर मदद कर सकता और उन्हों के अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दी सकता और उन्हों के यह योजना की पात्रता के बारे में और यह योजना के लाभ लेने के बारे में जानकारी दी सकता और उन्हें मदद कर सकता। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत आप लोगों दगड़ अखिल कले करते रूल, पहले आप लोगों को मनोरंजन करनू रमेश जोशी गाई हुई यह कुमाऊनी लोकगीत दगड़।

0: श्रोताओं, रमेश जोशी के स्वर में आप लोगों सुनो यह कुमाऊनी लोकगीत। श्रोताओं, आयकर रिटर्न सत्र शुरू है गो और अब सभी नौकरी पेशा लोग या फिर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी और व्यापारी लोग सभी लोग अपन रिटर्न दाखिल करन और आयकर रिटर्न भरण है पहली। बहुत बार हम लोगों के मन में बहुत से शंका होनी, बहुत से सवाल होनी कि आयकर कसिक भरण छू, कसी के दाखिल करण छू, के यह एक संबंधी प्रक्रिया होनी और यह क्या के लिए जरूरी छू। तो यह सभी सवालों की जानकारी लड़क लीजिए हमूल बातचीत करी एडवोकेट आशुतोष रावत जू दगड़। तो कार्यक्रम में अखिल आप लोगों के हम सुनो नू आयकर रिटर्न संबंध में एडवोकेट आशुतोष रावत जू दगड़ करी हुई हमारी बातचीत। श्रोताओं, आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है एडवोकेट आशुतोष रावत जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद नेहा जी।
0: सर, जैसा कि आयकर रिटर्न सत्र यानी कि आईटीआर सत्र शुरू हो चुका है और अब सभी वेतन भोगी या फिर सभी नौकरी पेशा लोग रिटर्न दाखिल करने की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि समय रहते उनका आयकर रिटर्न फाइल हो सके, तो सर इनकम टैक्स और आईटीआर से संबंधित इन सभी बातों में हम आपसे आज बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर होता क्या है।
1: नया जी, अगर मैं इनकम टैक्स की अगर बात करूं तो थोड़ा अगर हम इसके इतिहास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति उस समय हुई थी, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उनको भारी जो आर्थिक नुकसान हुआ। अब जब विद्रोह हुआ उसके बाद सरकार के पास अपने सेना को प्रशासन को चलाने के लिए पैसे नहीं थे तो उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी। तो उस समय एक जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। जेम्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनेता थे। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले उनको भारत भेजा ताकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारी जा सके। अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 1860 में 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स कानून लागू किया। इसीलिए इनको हम इनको फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है, सर जेम्स विल्सन को। अब समय रहते रहते इसमें काफी आगे बढ़ती रही चीजें, तो धीरे धीरे इसमें टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे, चेंजेस होते रहे, तो फाइनली हमारा बना इससे पहले जो हमारा लागू था, क्योंकि अभी तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। अभी तक हम जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते थे, इस एक्ट के तहत में सारे काम जो हम इनकम टैक्स से रिलेटेड आयकर से रिलेटेड करते थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारा लागू था। अब इनकम टैक्स क्यों दिया जाता है, अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, तो उसको कई सारे विकास कार्य करने होते हैं, डेवलपमेंट करने होते हैं, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, कहीं सड़कें बनानी है ना, तो मतलब देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अगर विकास करने के लिए कई सारे काम करने के लिए उसको मुख्य रूप से पैसे की जरूरत, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है पैसा। इनकम टैक्स का मेन पर्पस ये होता है कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो अपनी आय का एक छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में भारत सरकार को दे और अपनी आईटीआर फाइल करें ताकि उस पैसे का सरकार जो अपनी सामाजिक कल्याण का जो कार्य करती है उसके लिए उसका प्रयोग कर सके, कहीं पे स्कूल बनाना है, कहीं पे हॉस्पिटल बनाना, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो इन सब चीजों के लिए कि मतलब कि शिक्षा के सुधार के लिए है ना, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो भी हमने डेवलपमेंट कर रही है सरकार जो कर रही है वो हमारा जो इनकम का हम छोटा सा पार्ट सरकार को देते हैं हमें टैक्स के रूप में, तो वही हमारा इनकम टैक्स कहा जाता है।
0: जी, तो सर आपने आईटीआर की बात करी और अब जैसा कि आईटीआर फाइल करने का समय भी आ चुका है एक तरीके से, तो ये आईटीआर क्या होता है और इसे भरना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: देखिए, आईटीआर आज की डेट में अगर हम आईटीआर की बात करते हैं तो आईटीआर भरना मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्यों मतलब सभी के लिए बोले तो जो लोग अर्निंग कर रहे हैं। मुख्यतः इसमें पांच कैटेगरी में इसमें रखा गया है, एसएससी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जो करदाता जिन्हें कहा जाता है। अगर हम फाइव टाइप से किसी भी तरीके की अगर हम इनकम हमारे पास अर्न हो रही है तो इनमें अगर इस तरीके से अगर पैसा हमारे पास अर्निंग हो रही है, जैसे क्योंकि टैक्स पेयर को अलग अलग हेड्स में रखा गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास रेंटल इनकम है, आपके पास एक से अधिक मकान है, तो वहां पे उस आपकी इनकम को कहा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप व्यापारिक कार्य कर रहे हो, तो आपको फिर जो इनकम वहां से मिल रही है, मतलब आपने जो प्रॉफिट वहां से अर्न करा, तो वो आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर सेकंड वन, अगर आप प्रोफेशनल्स हो, अगर आप एज ए एडवोकेट काम कर रहे हो, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हो, एज ए डॉक्टर्स आप अपनी सेवाएं दे रहे हो है ना, आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तो आपको जो फीस के रूप में जो पैसा मिलता है तो वो प्रोफेशनल इनकम में काउंट होती है, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के हेड में वो आ जाता है। अगर कैपिटल गेन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेजेंट में जो न्यू जो नया जो यूथ है ये मैक्सिमम शेयर मार्केट की ओर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है,
0: जी
1: शेयर मार्केट की ओर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो ये जो इनकम हम अर्न करते हैं कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टू पर कैपिटल गेन देखा जाता है। सपोज मैं अपनी कोई जमीन बेची, कोई मकान बेचा, कोई प्रॉपर्टी मैं सेल आउट कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर सपोज दैट मैंने आज से 10 साल पहले वो प्रॉपर्टी परचेस करी थी 10 लाख रुपए में और आज मैं उसको 15 लाख रुपए में सेल कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको 5 लाख रुपए सेल आउट किया है, तो मैंने उससे प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो कैटेगरी आ जाती है हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वैसे ही अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, अगर हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होती है, तो ये कैटेगरी हमारे आ जाती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब नेक्स्ट वन कि अगर हम लोग मैं सपोज इनकम मैं सैलरी में जॉब भी कहीं पर ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है और मैं कोई बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं करता हूँ, या मैंने कोई प्रॉपर्टी भी अपने सेल आउट नहीं करी है, मैं कुछ दूसरे टाइप के काम करता हूँ, जैसे सपोज मैं कोई लॉटरी मेरी लगी या मेरे को कहीं से कोई गिफ्ट मिल गया अचानक, है ना
0: जी,
1: या मेरे जैसे सपोज पेरेंट्स ने मेरे नाम पे FD करवा रखी है या मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, तो ये अलग फिफ्थ वाली जो कैटेगरी होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स की अगर मेरी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में ना आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना आए, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की भी नहीं है, कैपिटल गेन की भी, तो मेरी जो अदर इनकम जो काउंट होगी वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 टाइप के इनकम की कैटेगरी है, जो भी करदाता मतलब जो भी SSC अपनी रिटर्न फाइल करता है वो इन 5 हेड्स के अंदर करता है
0: जी।
1: अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि एक सैलरीड पर्सन है तो उसके पास कैपिटल गेन नहीं है, मतलब 2 टाइप उसकी इनकम मर्जी होता है। अगर मैं सपोज दैट मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ मुझे सैलरी मिल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने सैलरी के पैसे को कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहां से मुझे कैपिटल गेन मिलता है, होता है, तो मेरी 2 टाइप की इनकम होगी, नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
0: जी तो सर अगर जैसा आपने बताया कि कोई सैलरी से भी किसी के पास इनकम आ रही है और किसी के पास किसी कैपिटल गेन से भी कोई इनकम आ रही है, तो क्या उसको अलग अलग ITR फाइल करना जरूरी होता है या फिर केवल एक ITR में ही वो अपना टैक्स फाइल कर सकता है?
1: नेहा जी, इसमें ITR के अलग अलग फॉर्म्स हमारे दिए हुए हैं। अभी हमारा जैसे वर्तमान में असेसमेंट ईयर 2026-27 की हमने ITR फाइल की ड्यू डेट जो आपने प्रारंभ में बताया कि चालू हो गई है, क्योंकि अभी हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 असेसमेंट ईयर तक लागू है। अभी हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जब हम फाइल करेंगे अपना रिटर्न, तो वहां पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बेस पे हम रिटर्न फाइल करेंगे
0: जी।
1: लेकिन अभी हम प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो SSC के नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से उसका फॉर्म डिसाइड होता है कि वो ITR 1 फाइल करेगा या ITR 2 फाइल करेगा या ITR 3 फाइल करेगा या ITR 4 फाइल करेगा, तो अलग अलग फॉर्म्स इसमें दिए होते हैं। तो SSC अपनी इनकम को जस्टिफाई करने के लिए उसकी इनकम का सोर्स लिखा जाता है कि किस तरीके से उसकी इनकम का सोर्स है, उसी हिसाब से उसका फॉर्म डिसाइड होता है
0: जी। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर ITR भर रहा है तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
1: देखिए, अगर पहली बार ITR फाइल अगर हो रही है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो SSC है वो 18 साल की एज को क्रॉस कर चुका है या नहीं, क्योंकि अगर वो 18 से नीचे है तो वहां पे उसके जो ITR फाइल होगी वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर होगी, या तो मतलब उनके फादर को उसमें ऐड किया जाएगा या मदर को उसमें ऐड किया जाएगा
0: जी।
1: लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कुछ केसेस होते हैं, जैसे वहां पे अपनी स्किल बेस्ड वर्क अगर कर रहा है, जैसे सपोज वो शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या हो सकता है कि वो यूट्यूबर है, तो इसे कुछ अलग कैटेगरी की जो वहाँ पे वो इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है ITR अपनी। लेकिन इस पर मुख्यतः ये देखा जाता है कि सबसे पहले कि उनके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए और उनके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि उनके पैन कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन, उनका नेम, उनके फादर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम एज इट अपने जो आधार कार्ड है, सिर्फ आधार और पैन की इन्फॉर्मेशन मतलब मैच कर लें, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, कहीं पे कोई अपना स्पेलिंग

0: या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, ये तो नहीं है।
1: हुँ.
0: और नंबर टू कि वो अपना ये चेक कर ले कि उनका पैन और आधार जो है वो लिंक है या नहीं है।
1: जी.
0: अगर उनका पैन और आधार लिंक नहीं है तो वो जल्दी से जल्द अपना पैन और आधार लिंक करवा लें, है ना। अगर ये नहीं है तो इसके बिना उनकी आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज, उसके बाद उनका अपना एक बैंक अकाउंट उनके पास होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो उनके ऑब्वियसली आपके पास डेट पर सभी के पास रहता ही है। तो ये चीजें हैं मेन, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंड एक बैंक अकाउंट।
1: जी तो सर, क्या ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना सुरक्षित और आसान होता है?
0: हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अब जो आईटीआर फाइल का जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन ही है। पूर्व में काफी लंबे टाइम से अभी इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होता है वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। हाँ, तो इसमें इनकम टैक्स साइट है उसके में जाके अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना बैंकिंग एड करना होता है। बैंकिंग एड करने के बाद अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या खुद भी कर सकते हैं, या आप अपने किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं।
1: इसके अलावा सर, जैसे अगर कोई व्यक्ति समय पर या फिर लास्ट डेट तक भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है तो उससे उसे क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: देखिए, अगर समय से आईटीआर फाइल ना करें तो सबसे पहले जो मेन, जो सबसे मुख्य तो जो नुकसान उसको होगा वो तो फाइनेंशियल, मतलब कि लेट फीस जो उनको पे करनी पड़ेगी। अगर वो विद इन ड्यू डेट अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पे उनका जो भी टैक्स अगर कैलकुलेट होता है तो टैक्स तो उनको डिपॉजिट करना होगा। अगर ड्यू डेट से पहले अगर हम करेंगे तो जो हमारी लाइबिलिटी अगर टैक्स की बनती है तो हम टैक्स ही पे करेंगे। लेकिन अगर हम ड्यू डेट क्रॉस कर जाते हैं, आफ्टर ड्यू डेट अगर हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पे अपना जो बेसिक लाइबिलिटी जो हमारी है उसके एडिशनल में हमें जो पे करना पड़ता है वो करनी पड़ेगी लेट फीस। लेट फीस प्लस पेनल्टी हमें पे करनी होती है। तो अगर हमें इससे बचना है, मतलब अगर हमें लेट फीस पेनल्टी से बचना है और अपनी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है इसको आगे सही रखना है तो सभी से यही सजेशन रहेगा कि अपना समय से आईटीआर फाइल करवाएं, ड्यू डेट का ध्यान रखें और जो भी अपनी इनकम है अपनी इनकम को छुपाने का प्रयास ना करें, अपनी सब चीज को क्लियर करके अपना आईटीआर फाइल करें।
1: बिल्कुल। इसके अलावा सर, आज के समय में फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर आर्थिक जागरूकता का होना कितना जरूरी है?
0: देखिए, आज की डेट में मेन तो यही है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस तो होना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम फाइनेंशियल अवेयर नहीं रहेंगे तो दिन पर दिन महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, तो वो अगर हमें यही पता नहीं होगा कि हमें अपने इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हमने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे से आगे को रखना है, है ना। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हम कोई भी काम आज के डेट में करते हैं, सपोज कोई व्यक्ति है वो कई 5 साल से जॉब कर रहे हैं, अब उनका प्लान हुआ कि उनको मकान बनाना है या कोई गाड़ी लेनी है या बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एजुकेशन लोन लेना है, तो जब वो बैंक के पास जाते हैं तो मुख्यतः तो उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करनी होती है। तो सोर्स ऑफ इनकम में जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आईटीआर है, ये काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपना इनकम को सर्टिफाइड करने के लिए। अगर हम लोग की प्रॉपर अगर हम कहीं से इनकम अर्न कर रहे हैं तो अपना आईटीआर समय से दाखिल करें और इसके लिए अवेयर रहें कि इसकी ड्यू डेट कब है और समय से पहले अपना रिटर्न फाइल करवाएं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा सर, आपको क्या लगता है कि एक जिम्मेदार करदाता या फिर एक जिम्मेदार टैक्स पेयर बनना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, अगर हमारे कंट्री में अगर सब लोग जितने भी एसएससी जो हैं करदाता, अगर वो ईमानदारी से अपना टैक्स समय से पे कर दें
1: जी।
0: और अपनी इनकम को हाइड ना कर, छुपाए ना, और जो भी इनकी इनकम जो पैसा वो कमा रहे हैं, चाहे वो अपना सैलरी से कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं, या प्रोफेशनल है, या हाउस प्रॉपर्टी है, या कैपिटल गेन है, किसी भी तरीके की अगर उनकी इनकम है और वो एक ईमानदारी से अपना टैक्स जमा कर देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो हमारी जो देश की जो आर्थिक स्थिति है ये काफी अच्छा इसमें सुधार आ सकता है। क्योंकि सरकार के पास अगर पैसा होगा तो सरकार डेवलपमेंट करेगी।
1: बिल्कुल।
0: अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, लोग अपनी इनकम को शो नहीं करेंगे, समय से टैक्स पे नहीं करेंगे, तो सरकार के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा। तो जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो इसमें सुधार होना इतना आसान नहीं होगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा सर, जैसा आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को कई बार साइबर फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है, तो ऐसे में लोगों को जब कई बार टैक्स से जुड़े फर्जी कॉल आते हैं या फिर उनके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो लोग इससे कैसे बच सके हैं, उन्हें किन तरीके की बातों का खास ख्याल रखना होता है?
0: देखिए, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो हर चीज में, क्योंकि ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है वो तो किसी भी चीज में भी हो जा रहा है
1: जी।
0: अगर क्योंकि कई बार तो ऐसी चीजें आ जा रही है कि बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये फेक है या सच है, तो इसलिए अगर इन सब चीजों से बचना है तो जो ऑनलाइन जो अपनी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं किसी अननोन पर्सन को, उससे बचें और अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही किसी को भी शेयर ना कर दें। क्योंकि मैक्सिमम आज की डेट में लोग थोड़ा सा, मतलब कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि

0: लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो जबरदस्ती का उसमें गूगल में ऐसा सर्च करके अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और फिर जब उनके साथ धोखाधड़ी होती है फिर उनको एहसास होता है कि यार ये मुझे नहीं करना था। तो अगर इनकम टैक्स के टाइम पे अगर हम इस सबसे चीजों को अगर इस टॉपिक से अगर जोड़ते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो डिटेल है वो उसी को शेयर करिए जिसे आप जानते हैं,
1: जी
0: और अगर हो सकता है तो आप उनके साथ बैठिए समझिए, या आप अगर स्वयं उन सब चीजों को करते हैं तो ऐसे ही किसी को, मतलब कोई अननोन पर्सन को या कोई वेबसाइट के थ्रू या कोई लिंक अगर आप भेजते हैं, तो आप बिना ऑथेंटिकेशन जानते हुए कि ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना करें। और खासकर विशेष इस चीज का ध्यान रखें कि ओटीपी किसी को शेयर ना करें, ओटीपी किसी को शेयर ना करें जब तक यदि आप उनको जानते नहीं।
1: बिल्कुल। तो सर अंत में एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने एक सशक्त राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए हमें एक ईमानदार करदाता बनना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये हमारी केवल एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसा कमा रहे हैं तो वो समय से अपना रिटर्न फाइल करवाएं और जो भी उनका टैक्स बनता है वो समय से जमा करें।
1: बिल्कुल। तो सर आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ आपने साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद नेहा जी।
2: श्रोताओं आप लोगों सुनी आयकर रिटर्नक संबंध में एडवोकेट आशुतोष रावत जुदगढ़ करी हुई हमारी भेंट वार्ता।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, हम मनखियों के जस अपन लिजी भल व्यवहार पसंद हूँ। जस हम चाहूँ कि हमर दगाड़ दूसर भली भा रहो, हमर दगाड़ भल व्यवहार करो, हमू के बिना मतलब हमर दगाड़ हंस मजाक नहीं करी जाओ या हमर दगाड़ छेड़छाड़ नहीं करी जाओ। तो उसी के हमर आसपास जो ले जानवर छें, जो ले पशु छें, जो ले पशु पक्षी छें, उन सबू दगाड़ ले संवेदनशील करुणामय व्यवहार करण हमर कर्तव्य छू। किले की श्रोताओं, भले ही जानवर मुखेल बुले नहीं सकन, भले ही वो अपन बात हम उके नहीं समझ सकन, लेकिन जब हम उनके कोई दुख दर्द दिनों या फिर हम उनर दगड़ कोई छेड़छाड़ करनूँ, उनर दगड़ मारपीट करनूँ या उनके भली भानि धरन, तो उनके लिए उतुके तकलीफ है जतुक हम उके हैं। तो श्रोताओं, जानवरों दगड़ संवेदनशील व्यवहार करण, उन दगड़ करुणा भरी व्यवहार करण

केवल हमारे नैतिक मूल्यों के निदर्श हूँ, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक संतुलनक लिजिले बहुत आवश्यक छू। श्रोताओं, पशुओं के हमेशा पर्याप्त मात्रा में खाण पीण, साफ पानी और रूणक लिजी सुरक्षित और हाउदार जाग जरूर दिण छे। कभे ले उनके बिना बात है घर बे भजे बेर इथा उथा नहीं भजे दिण छे, या फिर उनके जगत लीजिए परेशान नहीं करण छे। उनके एक भली खुली हाउदार जाग हमुके दिण छे, ताकि उले भली खुली हाउ में सांस ली सको, भली भाव रह सको। यह कलावा श्रोताओं, बहुत बार हम देखनु कि बहुत से मनखी बिना बात के जानवरों के मार दिनी। भले ही अगर कोई चलते फिरते कोई कुकुर उनर आसपास बटी गुजर जाए, या कोई गोर इसी के उनर घर के आसपास बटी उनर खेतु बटी नह जा, तो सिद्ध बहुत से लोग उनके मारण फै जानी। तो यस करण है हमेशा हमुके बचण छे, किले की मारण में उनके लिए तकलीफ है और उनर दगड़ यह कोई भल व्यवहार या मानवीय व्यवहार नहीं हुन। तो उनके मारण पीटण है बचण छे, और उनर क्षमता है ज्यादा भार उनके ढोणक लीजिए मजबूर नहीं करण छे। किले की बहुत बार घोड़ खच्चर आदि में हम देखनु कि बहुत से लोग के करनी कि उनर क्षमता है बेरले ज्यादा भार उन पर लाद देनी। तो हमुके यह बात ध्यान धरण छे कि पशु एक जतुक ले वीक क्षमता छे जानवर एक उतुके भार वीक मलीबे लादण छे। यह कलावा अगर घर में या फिर आसपास कोई पालतू पशु या फिर कोई लयस पशु आप लोगों के बीमार देखियो, तो उके उसी के नी छोड़ण छे। वीक वीक पशु चिकित्सक के पास अगर आप लोग ले जाण में सामर्थ्य छा, तो उके पशु चिकित्सक के पास लीजिए बेर वीक इलाज करूँ छे, या फिर वीक लीजिए थोड़ा बहुत दवाई पानी की व्यवस्था हमू के करण छे, ताकि ऊ ठीक है सको। श्रोताओं, यह बहुत नन-नन आदत छे जो हम अपन आसपास के जानवरों के लीजिए पशु पक्षियों के लीजिए अपने सकनू, ताकि ऊ सुरक्षित रहो, उनर स्वास्थ्य सही रहो और जरूरत तक टाइम पर हम उनर मदद कर सकूं। जैल की अगर ऊ स्वस्थ रोला तो वील हमार पर्यावरण का संतुलन बढ़ी लो। किले की श्रोताओं, पर्यावरण में हर एक पशु पक्षी, हर एक बोट डव, हर एक मनखी, हर कैक अपन अपन भूमिका छू, और हर कोई अपन अपन जाग पर बहुत जरूरी छू। तो पर्यावरण का संतुलन बढ़ाई धरना के लीजिए और पशु पक्षियों के सुरक्षित धरना के लीजिए, हमू के अपन नैतिक कर्तव्यों के और अपन इंसानियत के समझते हुए पशुओं दगड़ भल व्यवहार करण छे, क्रूरता व्यवहार हमू के उनर दगड़ नहीं करण छे।

श्रोताओं, भगवती प्रसाद पोखरियाल और दगड़ियों स्वर में आप लोगों सुनो यो गढ़वल लोकगीत। और ये के दगाड़ आजक उत्तरायण कार्यक्रम इतिक संपन्न करने की नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार।

अभी श्रोता उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू। 5 दिनों तक 72 बीटों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला अस्पताल में भी शुरू की गई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभागीय समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त हो सके। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने, वनाग्नि रोकथाम, आपदा प्रबंधन तैयारियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में विभागीय तालमेल बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।
2: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में, पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको पैसा मिला हुआ है, तत्काल इसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो शीघ्रता से तेजी से काम करें, गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
1: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियां मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटी हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक धाम में 8,72,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं के रहने, भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्ग और धाम में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु सरकार की सराहना कर रहे हैं। मुंबई से पहुंचे श्रद्धालु हर्षित ने भी यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की।
3: अनुभव बहुत अच्छा रहा, ट्रैक काफी लंबा था, काफी कठिन था, बट जब पूरा किया तो काफी अच्छा लगा। व्यवस्थाएं काफी बढ़िया है यहाँ पे, साफ सफाई है, लोग काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल पीपल हैं यहाँ पे, कुछ भी पूछो तो अच्छे से बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, तो व्यवस्थाएं और लोग काफी अच्छे हैं। हर हर महादेव।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। पुस्तक में नेतृत्व, सेवा, सुशासन व राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री धामी ने पुस्तक के प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री को शुभकामनाएं दी तथा इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं।

यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका

0: सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का विशेष अभियान आज से शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत रिजर्व की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक रेंज में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। अभियान में 150 से अधिक वनकर्मी और विशेषज्ञ लगाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि विभिन्न वन क्षेत्रों में तैनात वनकर्मी प्रतिदिन करीब 3 किलोमीटर पैदल गश्त करेंगे और मोबाइल आधारित पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से हाथियों की लोकेशन और गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। ये सर्वे लगभग 5000 वर्ग हेक्टेयर वन क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके माध्यम से कॉर्बेट क्षेत्र में हाथियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्राकृतिक आवास की जानकारी प्राप्त की जाएगी। डॉक्टर बडोला ने कहा कि समय समय पर होने वाली गणना से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और वन्य जीव प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में भी सहायता मिलती है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले इनर लाइन परमिट के केवल धारचूला तहसील से जारी होता था, जहां यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और औपचारिकताओं में काफी समय लगता था। जिलाधिकारी आशीष फटगाई ने बताया कि यात्रियों और स्थानीय लोगों की लगातार मांग को देखते हुए जिला मुख्यालय में भी इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
2: इसमें कई लोगों का ये हम सब लोगों से रिक्वेस्ट थी कि जो इनर लाइन पासेस बनते हैं उसके लिए मुख्यालय में भी व्यवस्था की जाए, तो उसी के क्रम में जिला मुख्यालय में भी जिला चिकित्सालय में एक काउंटर लगा के हम लोगों ने इनर लाइन के जो पास होते हैं उनको देने की व्यवस्था बनाई है, ताकि जो आम जनमानस है और यात्री हैं वो उसका लाभ ले सके और पिथौरागढ़ में ही ILP जो पासेस हैं वो बनाए जा सके।
1: वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DP सिंह के अनुसार प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल में एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, पुलिस सत्यापन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं एक ही स्थान पर पूरी कर परमिट जारी किए जा रहे हैं।
3: जी, यहाँ पे जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर हमने जिला अस्पताल में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत यात्रियों के इनर लाइन सिस्टम परमिट के लिए, तो यहीं पे यात्रियों का मेडिकल बन जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं।
1: चमोली जिले में आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि ज्योतिर्मठ आपदा से प्रभावित नगर में पुनर्निर्माण और भूध साफ सुरक्षा कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बरसात में कोई परेशानी ना हो। सिंचाई विभाग द्वारा अलकनंदा नदी में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन में हेलंग मारवाड़ी बाईपास भी बनकर तैयार हो जाएगा।
4: देखिए, दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो BRO के द्वारा की जा रही है, उसमें मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जाना है। एक हेलंग मारवाड़ी का बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है, वहां तक के बीच के रास्ते में जो लैंड स्लाइड प्रोन जोन है, वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए PDNA द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क, साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, वो भी PWD और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
1: वहीं कार्यों को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी है। स्थानीय निवासी अमर सिंह चौहान ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि नगर में हो रहे पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य ज्योतिर्मठ को मजबूती प्रदान करेगा।
5: जोशीमठ में सरकार द्वारा जो भूस्खलन का रोकथाम के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें जो हमारे यहाँ से यात्री बाहर से आते हैं उनमें एक भय का माहौल बना हुआ था, जो कि अब कुछ कम हो चुका है, और इनके लिए जो बाईपास की जो रोड काटी जाएगी या बाईपास की व्यवस्था की जाएगी वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे जोशीमठ या हमारे चमोली के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के कार्य जनता हित में किए जाए, और लगातार आपके प्रयास से हो भी रहे हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू, 5 दिनों तक 72 बीटों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला अस्पताल में भी शुरू की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं लखबीर सिंह लखा की गाई इस भक्ति रचना से।

कार्यक्रम के आरंभ में श्रोताओं आपने लखबीर सिंह लखा की गाई भक्ति रचना सुनी और अब लीजिए प्रस्तुत है घनश्याम वासवानी के स्वर में ये भजन।

घनश्याम वासवानी की गाई इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का यह अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे आधुनिक तकनीक द्वारा करे जाणो छो और ज्यादा मजबूत। अब टीवी स्क्रीन पर भी दिख्याल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप का अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी बैठक का आयोजन। चमोली जिला में आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन और बर्रो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जानो जो। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे और अधिक प्रभावी बनाण का दिशा में अब DTS प्लेटफार्म का माध्यम से भी ज्यादा आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाल। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम थे मजबूत करना का तहत DTS का जरिया टेस्ट अलर्ट का सफल प्रसारण किए गए। पहले चरण में यह परीक्षण देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षण के दौरान कई प्रमुख DTS प्लेटफॉर्म पर टीवी स्क्रीन पर टेक्स्ट अलर्ट संदेश दिखे। ये संदेश लगभग 15 से 40 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखे। ये प्रणाली का माध्यम से आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों को कुछ ही सेकंड में बड़ा स्तर पर प्रसारण संभव हो सकलो। नई व्यवस्था के तहत टीवी स्क्रीन पर सीधा संदेश दिखेण से लोगों को तत्काल ध्यान आकर्षित होलू। ये से अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी बरखा, आकाश बिजली और लू जनी घटनाओं से पहले लोगों को समय रहंदी सतर्क करे जा सकलो। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमनन बोली कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य छे। इन वजह से समय पर चेतावनी को आम जन तक पहुँचा बहुत जरूरी छे। उन बोली कि DTS आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा से पहली चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनोली। उन बोली कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों का उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम थे लगातार मजबूत करनी छे ताकि कहीं भी आपदा या खराब मौसम की स्थिति में समय रहंदी सटीक सूचना पहुँचे की जनहानि और नुकसान को बहुत कम किए जा सको। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बठिन रविंद्र सिंह।
0: गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी एक बैठक आयोजित करेगी। बैठक में मंडल और जिला स्तर का अधिकारियों का दगड़, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभागीय समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेगी। आयुक्त ने अधिकारियों से निर्देशित करी कि शासन की प्राथमिकताओं का अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करे जाओ ताकि आम जन थे योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सक। उन कानून व्यवस्था थे मजबूत बने रखण, स्वास्थ्य सेवाओं थे बेहतर करण, वनाग्नि रोकथाम, आपदा प्रबंधन तैयारियां और आधारभूत सुविधाओं से जुड़िया कार्यों में विभागीय तालमेल बने रखण पर विशेष जोर दे।
2: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में, पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको पैसा मिला हुआ है, तत्काल इसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो शीघ्रता से तेजी से काम करें, गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दगड़, विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन करी। पुस्तक में नेतृत्व, सेवा, सुशासन व राष्ट्र निर्माण से जुड़िया महत्वपूर्ण विचारों से सरल और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करेगी। श्री धामी ने पुस्तक का प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री से शुभकामनाएं दी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों

0: यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: चमोली जिलामां आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठमां प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि ज्योतिर्मठ आपदा से प्रभावित नगर मां पुनर्निर्माण और भूदशाओं सुरक्षा कार्य तेजी से करे जाना छन ताकि लोगों थे बरसात मां कोई परेशानी निवा। जिलाधिकारी ने बोली कि आगामी यात्रा सीजन मां हेलंग मारवाड़ी बाईपास भी बनी तैयार हो जा।
2: देखिए दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बीआरओ के द्वारा की जा रही है, उसमें मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जाना है। एक हेलंग मारवाड़ी का बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है वहाँ तक के बीच के रास्ते में जो लैंड लाइफ प्रोन जोन है वहाँ पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए पीडीएनए द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है वो भी पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
1: सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का योग विज्ञान विभाग द्वारा बरो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में 21 मई बटी 21 जून एक महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जाणो छो। ये क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को एक महीना तक विशेष निःशुल्क योग शिविर आयोजित करेगी। छात्राओं ने रोज सामान्य योगाभ्यास का दगड़ दगड़ विभिन्न रोगों का उपचार का बाबत योगासन प्राणायाम ध्यान आसन भुजंगासन आदि योगिक क्रियाओं का अभ्यास करे जानो छो। योग विज्ञान विभाग का प्रधान योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी ने बताई कि योग शिविरों का माध्यम से लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली मानसिक शांति सकारात्मक ऊर्जा गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ने को रेवार दिए जानो छो।
3: नमामि गंगे व सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलता आ रहा है जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं। जहां केवल अल्मोड़ा ही नहीं अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद दिल्ली लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहाँ के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
1: वही छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्य ने बोली कि योग शिविर से विभिन्न योगिक क्रियाओं थे जन का बाद वो अन्य लोगों थे भी यहाँ प्रति जागरूक कारण।
4: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है जो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
5: हमारे वहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है जिससे कई सारे रोग नष्ट होते हैं जैसे सर दर्द कमर दर्द पेट दर्द, इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
1: पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगी जहां 48 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग ले। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी ने बताया कि स्क्रीनिंग परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने का बाबत मार्गदर्शन प्रदान करण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे आधुनिक तकनीकी से करे जानो चो और मजबूत। अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखाल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी बैठक का आयोजन। चमोली जिला में आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन। और बर्रो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जाणो छो। यहाँ दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हो चु। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम

किसानवाणी कार्यक्रम सुने सब श्रोताओं के मैं कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हर मौसम में किसान अपन खेतों में विभिन्न तरीकनक खेती काम करूं। यदि हम जून बलिभेर जुलाई महीनक बात करूं तो ये दौरान धानक रोपाई हमर पर्वतीय क्षेत्रों में करी जाए। मैदानी क्षेत्रों में कुछ अलग मानक है सकने और पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा अलग तरीकल धानक रोपाई करी जाए। हमर पहाड़ी क्षेत्रों में दो प्रकारक धान जो छन किसान भेबेड़ी उग सकनी, पहली छ उपराऊ और दोहर छ तलाऊ। तो उपराऊ और तलाऊ धानक खेती अपलोक कर भेर भल मुनाफा कमे सक्षा, जो कि अलग अलग मेहड़ों में हमारे किसान जो छे लग सकने। स्वतः पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर जो दो तरीके के धानक प्रजाति हैं, जिसके हम आपको पहले बता उपराऊ और तलाऊ। तो उपराऊ धानक जो खेचु उद्यु प्रकार करी जाए, यानी कि एक रोपाई जो छे जो तरीकल हैं, जमे कि चैत की धानक कें मार्चक अंतिम सप्ताह बलिवेल अप्रैल प्रथम सप्ताह तक एक लगाई जा। तो पर्वतीय क्षेत्रक जो किसान भेवेण छिन कुछ किसान एक कन्नी और ज़्यादातर किसान जो छे वो जेठी धान के लगुनी, जैक बुआई जो छे वो जूनक पहल हफ्ते में एक रोपाई जो छे करी जाए। तो हम जो किसान भेवेण छिन वो भल किस्मुनक चयन कर भेर जेठी धान के लग सकने और उपराऊ धान के लगोण में जो है कि लेकिन हम ये देखनू कि जो किसान भे मिले छन ये धानक जो अवधि हैं वो ज़्यादा अवधि छ, करीब 140 बलिवेर 150 दिनों की मैं बखत लागू और इमें दो साल में तीन बार किसान फसल ले पाने। और यह लीजिए हमार जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान छन वहाँ वैज्ञानिकों ने कुछ नई प्रजातियों के में चयन उन्होंने कर रहा बढ़ रहे, तो उकल हमारे किसान भाई बहने जो छे लग सकनी। जमे कि अगर हम जेठी धानक जो बात करूँ तो जो 115 बिली

फिर 120 दिन तक जाए फसल तैयार हो जाए, उम्मा हम बीएल 156, बीएल 157, बीएल 158 और बीएल 159 एक जो प्रजाति छे वो हम लगे सकनो और हमारे जो किसान भाई बहन छे उनके लगे भी ज़्यादा मुनाफा जो छे वो कमा सकनी। एक तो इमें के लिए कि हमारे जो यो जेठी धान हम लोगों नु इमें हमारे जो श्रम छे उले कम लगा और इमें जो छे पानी जो मात्रा छे उले कम है, तो इसमें हमारे जो उपराऊ धान छो वो का हम ऐला अपने खेतन में लगे सकनो। या कि हालांकि हम उनके जो बीन छो जगह हम कह सकनो बीन कुनो हम पर्वतीय क्षेत्र में, तो बीन का हम उनके पहले तैयार करम पड़ो, तो आप उन्हें अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान में जो उन्नत किस्म हम उन आपके सुझाई उन्हें के लिए भी आप यो किस्मों के लगा सकते अपने खेतन में और ज़्यादा लाभ जो प्राप्त कर सकता।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुधाव कार्यक्रम में अगिला पुके सुनने उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने वाले कृषक गोपाल दत्त गुरानी निवासी ग्राम सभा और पोस्ट डोबा जिला अलमार लगे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
4: श्रोताओ नमस्कार। पर्वतीय क्षेत्र के कृषक अपने खेतों में परंपरागत रूप से जैविक उर्वरकों का प्रयोग पिछले कई सदियों से हुए आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के कुछ कृषक नवाचार के रूप में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार भी कृषकों से अपील कर रही है कि वो अपने खेतों में सीमित उर्वरकों और रासायनिकों का प्रयोग करें। इसके लिए हम आज ऐसे ही कृषक से बात कर रहे हैं जो अपने खेती में सीमित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, या हम यूं कहें कि ना के बराबर करते हैं, लेकिन नकदी फसलों के उत्पादन में और अपनी आय के मामले में उन्होंने कई कृषकों से आगे बढ़े हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा डोबा पोस्ट डोबा जिला अल्मोड़ा के प्रगतिशील कृषक गोपाल गुरानी जी से। सबसे पहले तो कार्यक्रम में गुरानी जी आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद गुरानी जी। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके पास कितनी जमीन है और वर्तमान में आप कौन सी खेती कर रहे हैं?
5: आपने जो सवाल मुझसे किया कि आपके पास कितनी जमीन है, तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, जमीन करने वाले की होती है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, जो खेती करेगा उसी की जमीन होती है। मेरे पास अपनी मूलतः कोई भूमि नहीं है, अगर आप मेरे आसपास परिसर में देखेंगे, लेकिन मेरे जो चचा ताऊ भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, सब पलायन कर चुके हैं। और पलायन करने के बाद मुझे लगा क्यों ना इनकी खेती में मुझे कुछ करना चाहिए। ये तो खेती के लिए पिताजी की जोड़ी हुई जमीन भी काफी है अगल बगल में, पर जैसे आपने पूछा 25 नाली लगभग पिताजी की जोड़ी हुई है, तो अगल बगल में कम से कम 50 नाली चचा ताऊ की जमीन और पड़ी हुई थी। जमीन मेरी अगर आप पूछे तो कम से कम मैं इसमें 75 नाली भूमि पर खेती कर रहा हूँ।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है गुरानी जी, आप एक बृहद मात्रा में पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये खेती आप कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में आपके खेतों पर क्या क्या लगा रखा है और किस प्रकार की तैयारी आप आगे को कर रहे हैं?
5: मैंने जो आपसे कहा कि प्रगतिशीलता की बात अगर आप करते हैं, तो आज के आधुनिक युग में आपको मल्टीप्लाई सभी चीजों को धीरे धीरे करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आसपास में सबसे पहले खेती के साथ बगीचा लगा हुआ है, और खेती की अगर आप बात करेंगे तो मेरे पास करीबन 200 आड़ू के पेड़ है लगभग, और ऐसे इसमें 10-15 सेब के पेड़ और एक आध आम का पेड़, एक आध अखरोट का पेड़, नींबू प्रजाति के करीबन 85 पेड़। इस हिसाब से मैंने फल के पेड़ ज्यादा लगाए, जो कमर्शियल मेरी खेती होती है, और उनके नीचे मैं अदरक हल्दी गोभी बीन्स लगाता हूँ। और दूसरी ओर मैंने दो खेत ऐसे हैं जहाँ पूरा कारोबार किया हुआ, घना कारोबार, जिसमें जंगली जानवर नहीं आ पाते। मतलब प्रयास किया है कि मेरी खेती पूरी रहे। सर्वप्रथम मैं

0: अपने खाने के लिए पैदा कर सकूं और उसके बाद जो बचता है उसे मैं बाजार में।
1: तो हम कह सकते हैं आप एक प्रकार से संयुक्त खेती कर रहे हैं, जिसमें बागवानी फसलों के साथ साथ आप अन्य कृषि के जो फसलें हैं उनका आप उत्पादन ले रहे हैं। तो जब बागवानी फसलों की हमने बात की, आपने बताया कि आपके पास आड़ू और सीट्रस के कुछ पौधे हैं, उसमें आप हल्दी अदरक लगाते हैं, तो अभी वर्तमान में आप क्या लगा रहे हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की तैयारी भी पर्वतीय क्षेत्र के कृषक करने लगे हैं।
0: वर्तमान में फिर से कहूंगा, क्योंकि जो खेती है उसको देखते हुए जो यहाँ पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसमें मैंने अभी गोभी लगा रखी है, कई खेतों में मैंने मूली लगा रखी है, किसी में दो तीन खेतों में मेरी गठरी लगी हुई है। तो लगातार प्रयास ये है कि सभी चीजें उत्पादन आने वाले समय में, मैंने करीबन इस समय 4 या 5 नाली में हल्दी लगाई हुई और करीबन 2 नाली में मैंने अदरक लगाई हुई है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और इसके बाद जो खरीफ की तैयारी आपने पूछा, तो अब हम यहाँ पर सोयाबीन बोते थे, सोयाबीनों में सुअर का आतंक होता, तो हम घात को सुअर कम खाता है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि जिन चीजों को जानवर नहीं खा रहे हैं उन्हें बोया जाए, और लगातार कोशिश कर रहे हैं और संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा के बाद मुझे लगता है कि अगर हम लोग कार्य छोड़ देंगे, प्रकृति में काम करना छोड़ देंगे, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो अपने आप काम करना छोड़ देंगे।
1: गुरान जी, अगर हम बात करें तो कोई भी फसल को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमने अपने प्रस्तावना में भी बात करी कि सिंचाई और उर्वरकों का, खाद का बहुत महत्व होता है, तो सिंचाई की आपके पास क्या व्यवस्था है और खाद आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं?
0: बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया सिंचाई की एक व्यवस्था, विशेषकर एक लिमिट के अनुसार हमको एक टैंक कृषि विभाग से मिला हुआ है, उससे हम काम करते हैं। जो पूर्व में पिताजी ने अपनी निधि से बनाया हुआ था एक टैंक, वो भी था, और लगातार परंपरागत खेती को हम करते हुए आ रहे हैं, तो सिंचाई की ये संसाधन हमारे पास बने हुए हैं कि कृषि विभाग से हमें अच्छी मदद मिली है, बड़ा जो कृषि विभाग है।
1: और खाद के बारे में बताना चाहें?
0: बिल्कुल, जो खाद के बारे में आपका सवाल है, तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से अलग प्रकार का एक व्यू जाता है, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो पशु पालन नहीं कर रहे हैं, केवल खेती करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बिना पशुपालन के आप खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खादों पर निर्भर रहेंगे तो आने वाले समय में आपके खेत पूर्ण रूप में खत्म हो जाएंगे। विशेषकर रासायनिक खाद तो जहर का काम करते हैं पहाड़ की खेती में। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी भूमि सिंचित भूमि नहीं होती है, और सिंचित भूमि जहाँ नहीं होती है वहाँ केवल और केवल हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर की खाद में फायदा, जैसे आपने पूछा पिछला सवाल सिंचाई का, तो गोबर की खाद जहाँ आप डालेंगे वहाँ सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। गोबर अपने आप में नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत लंबे समय तक खेतों में पानी आप नहीं भी डालेंगे तो खेत अपने आप कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखते हैं। और दूसरी ओर आपने पूछा कि जैविक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे विभाग देते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप तो कह रहे हैं कि सीमित मात्रा में हमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, पर मैं तो ये कहता हूँ कि सीमित मात्रा में भी हमें फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाद अगर आप स्वयं कोशिश करें तो आपके घर में खाद काफी बन सकती है। जैसे आपके पास पशुपालन नहीं है तो आप सारे हरी पत्तियों को इकट्ठा करके कहीं पर सड़ाना शुरू कर दीजिए, तो समय बाद वो अपने आप गोबर में डाइवर्ट हो जाता है। और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जैसे जो आपके पास झाड़ फूस होता है अगर उसको साफ करके एक गोबर ढेर लगा दीजिए तो कुछ समय बाद वह जो मिट्टी होती है वह भी खाद का काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि खाद से फसल बढ़ती है, पर केवल आप गोबर का इस्तेमाल करें, मैं तो यही राय दूंगा।
1: गुरानी जी, अगर हम बात करें खाद के लिए, तो आपने बताया कि पशुपालन के तरीके से वो कंपोस्ट भी बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं अपनी, और किस प्रकार से हरी पत्तियों को भी संचय करके उसकी भी खाद बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसके एक दूसरे पहलू में आते हैं, जिसमें हम कीटनाशकों की बात करते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हम पिछले लंबे अरसे से देख रहे हैं कि यहाँ की फसलों में बहुत ज्यादा जो रोग है वो होने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि हम एक तो परंपरागत बीजों का प्रयोग करते हैं, जो रोगरोधी किस्में हैं उनका प्रयोग अपेक्षाकृत कम करते हैं, तो ऐसे में कीटनाशी जैविक हो उसके लिए क्या पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग जो है अपनाया जाता है?
0: विशेषकर जो हम अगर आपको बताएं तो रसायनों से बचने के लिए हमारे वहाँ पर परंपरागत जो है गौत होता है, अगर गौत में आप पासी अथवा हाजरी के फूल जिसको हम गेंदा कहते हैं, गेंदे के फूल को सड़ा दें और 20-22 दिन बाद उसका जो रस है उसको हम निचोड़ के लें और उस गौत में उसके बाद 1 लीटर गौत में 6 लीटर पानी अगर डालते हैं, तो ये उसका अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये अपने आप में पूर्ण रूप से जैविक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूरी तो होती है, जैसे आप गोभी लगा रहे हैं, आड़ू लगा रहे हैं, अगर बृहत मात्रा में बगीचा है तो वहाँ आपको पॉइजन

0: डालना ही पड़ जाता है, मजबूरी होती है।
1: इसीलिए हमने सीमित संसाधनों की बात की, सीमित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग की बात सरकार भी कर रही है
0: जी। वही आपका मूलतः आपको गोभी में और आड़ू में स्प्रे करना ही पड़ता है पहाड़ में, और वो इसमें भी एक सीमित होना चाहिए। जैसे आड़ू में, अब मैं आपको जोशी जी बोलता हूँ, अधिकांश लोग ये मुझे राय देते हैं कि आड़ू में फूल लगने से पहले, फूल लगने के बाद और उसके बाद 3 स्प्रे होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आड़ू में केवल 1 बार स्प्रे करता हूँ, जब पूरा फूल खत्म हो जाता है, केवल फल लग गया है उसके बाद मैं स्प्रे करता हूँ। इसकी मेरी मजबूरी है कि मेरा बगल में मोहन पालन का भी बहुत अच्छा काम है, मेरे पास 30-35 पेटियां मधुमक्खियों की है।
1: तो गुरान जी, आपने बात की पाती की और गेंदे की। पाती तो मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक उसमें जहरीले तत्व जो है पाए जाते हैं, तो क्या गेंदे में भी ऐसे जहरीले तत्व होते हैं जो कीटों को खत्म कर देते हैं?
0: बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जो घोंस है उसमें कड़वापन पैदा करता है, और उसका जो कड़वाहट ज्यादा होती है, वो किसी भी कीड़ा भी अपने स्वाद के अनुसार मीठे कीड़ों में ही लगता है। और अगर आप उसके अलावा भी आपके पास विकल्प होता है, आप चाहे तो चूना भी डाल सकते हैं, चूना अपने खेतों में अगर डाल दें तो वो भी काम करता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक रासायनिक चीज है और चूना ज्यादा मात्रा में दिक्कत करता है। तीसरी चीज मैं आपको अगर एक चीज और बताऊं, हमारे अधिकांश किसान भाई ये कहते हैं कि मेरे आड़ू में दीमक लग, आलू की जो खेती होती है उसमें दीमक खेत कर देता है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ आड़ू के पेड़ होंगे, आड़ू के पेड़ जहाँ होंगे उनकी पत्तियां जब नीचे गिरती हैं तो उनमें दीमक नहीं लगता है। इसका मतलब कि कड़वी चीज जो है अगर जमीन में गिरती है तो वहां भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, हमारी जो परंपरागत खेती थी उस खेती में किसानों ने अपने खेतों के किनारे किनारे पाती के पेड़ लगाए हुए।
1: अगर हम संक्षेप में ये कहें तो किसान भाइयों को गोंद में गेंदा और पाती के पत्ते मिला करके उसे एक निश्चित अवधि में रख के उसको शाकनाशी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन में कीड़ा पैदा हो रहा है तो पाती को आप अपने गोबर में काट करके दबा दीजिए, जो खाद बनती है उससे भी कहीं ना कहीं कड़वाहट आती है और जमीन में, ये हमारे परंपरागत जो लोग खेती कर रहे थे, मैं उसी एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ।
1: गुरानी जी, समग्र रूप से अगर हम बात करें तो इन सब कार्यों से जो आप खेती कर रहे हैं, इससे आपको कितनी आय मासिक रूप से हो जाती है औसतन?
0: विशेषकर मैं ये मानता हूँ कि करीबन मेरा अपना जो पारिवारिक सब्जी का खर्च है, हमारा पूरा परिवार, हम 4 भाई यहाँ पर साथ संयुक्त रहते हैं, एक भाई थोड़ा रखते वो भी खेती करते हैं, तो जो संयुक्त फैमिली हमारी है उसका ही अगर आप मानते हैं तो 10,000 रुपया सब्जियों का या भोजन का जो अपना खर्चा है पर मंथ। आप इस चीज को मान लीजिए कि हम उस खर्च को बचाते हैं, पहला प्रश्न यह है कि उसके बाद हम कुछ लोगों को दे देते हैं, जब कोई आता है उसने कहा यार 3-4 फूल इसको दे दो, 2-4 इसको दे दो। और उसके अलावा जो मार्केट में मेरा जाता है, जैसे आड़ू जाता है सीजन में तो 40-50 हज़ार का आड़ू चला जाता है, करीबन 80-90 हज़ार का मेरा शहद चला जाता है, इसी प्रकार से मेरा गाय पालन से थोड़ा बहुत वहाँ से इनकम हो जाती है, तो ये मान लीजिए मोटा मोटी 2-4 लाख रुपया आ जाता है।
1: आप एक समेकित कृषि को करके अच्छी आमदनी आप कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है गुरान जी। अगर मैं कहूँ वर्तमान समय में सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं कृषकों के लिए चलाई जा रही है, आपने कौन कौन सी राशि सहायता प्राप्त की है अभी तक?
0: विशेषकर मैं ये कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा सहयोग उद्यान विभाग से मिला। उद्यान विभाग से इसलिए सहयोग मिला क्योंकि उद्यान विभाग में मैंने ये देखा कि हम एक रामगढ़ पट्टी में जाते हैं तो इसके काश्तकार 8-10 लाख रुपया बगीचे से कमाता है, तो मैं उद्यान विभाग के पास गया और मैंने उनसे आड़ू की कड़ू की डिमांड देखी और उन्होंने मुझे 270 पेड़ एक साथ, मतलब हम लोग, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें विभागों के पास जाना चाहिए अगर हम खेती करना चाहते हैं, तो उनके वहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको निःशुल्क पेड़ भी देते हैं। मौन पालन के लिए पेटियाँ सब्सिडी में मिली, पेयर सब्सिडी में मिले और बीज भी सब्सिडी में मिलता है, तो उद्यान विभाग का मैं बहुत आभारी हूँ।
1: तो कृषकों को थोड़ा सा जागरूक होकर के, थोड़ा विभागों में जा करके वो विभाग द्वारा जो जारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी कृषि में नवाचार के माध्यम से, और जहां तक हम एक जरूर ये बात जोड़ेंगे कि उर्वरकों का सीमित प्रयोग करके अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरानी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने वाले कृषक गोपाल दत्त गुरानी दगे अल्लापुर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुनने लग रहा है। कार्यक्रम में अखिलापुर का सुनो नंदलाल आर्या गई योग कुमाऊनी लोकगीत।
3: ओ हंसा चकोरा हाय ओ हंसा चकोरा किल भेटे बटमा को भोला रोपी को हो तेरी लटिमा, को भोला रोपी को हो तेरी लटिमा। ओ हंसा चकोरा हाय ओ

श्रोताओ, यो छि नन्दलाल आर्य। श्रोताओ, हर रोज हम आपके कार्यक्रम में कृषि संबंधी सलाह दिनु, तो आजक सलाह हमारे तरफ भे अपने कृषक बंधु के ये रहल कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषक भाई बहनी टमाटरक पौधन के उत्पादन लेन लाग रहा हुनल, तो अगर वो स्केटिंग कर ला अपन पौधन में, यानी कि एक लंबी छड़ी अगर उनमें लगा ला, तो वो ज़्यादा जो छो उत्पादन उनमें ले सकने। और अब माठोमाट बखत है को आज किसानवाणी कार्यक्रम का हम इतने का संपन्न करनु, भोला पुदगे फिर भेट हुए ऐला पुदगड़ी कृष्णा सिंह लटवार के जो अनुमति नमस्कार। हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: कामोक प्रभावी संचालन को लिबेर बैठकक आयोजन। चमोली जिलम आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक उपलक्ष्य में अलमण में एक मेणक आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। अब समाचार विस्तार। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को और जत प्रभावी बनोड़े दिशा में अब डीटीएच प्लेटफार्मक माध्यमल आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित करी जाल। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को भलकरणक भीतर है डीटीएच बटे टेस्ट अलर्टक सफल प्रसारण करी गयो। पहली चरण में यो परीक्षण देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलम करी गयो। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रमुख डीटीएच प्लेटफॉर्म पे टीवी स्क्रीन पे टेस्ट अलर्ट संदेश दिखाई दी। यह संदेश लगभग 15-40 सेकंड जाने स्क्रीन पे दिखाई दी। ये प्रणाली के माध्यम में आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों को कुछ ही सेकंड में फुल स्तर पे प्रसारण संभव है सकल। नई व्यवस्था थे टेलीविजन स्क्रीन पे सिद्ध संदेश दिखाई देने में लोगों को तुरंत ध्यान आकर्षित होल। इथे अचानक वार भूस्खलन भारी दियो आकाशीय बिजली और लू जैसी घटनाओं से पहले लोगों को समय रहते सतर्क की जा सकल। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार समनल को की उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि छे अत्यंत संवेदनशील राज्य छु। इलिजी बखत पे चेतावनी संदेश लोगों जान पहुंचान बेहद जरूरी छु। उन्होंने कहा कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा के पहली चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक त्वरित और प्रभावी बनाल। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग में अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत करने लग रहे ताकि केले आपदा या गंभीर मौसमक स्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराए बेर जन हानि और नुकसान को न्यूनतम की जा सके। आकाशवाणी देहरादून लिजी समाचार कक्ष में रेणु प्रीति।
0: गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामों प्रभावी संचालन को लिबेर एक बैठक भय। बैठक में मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के दगड़े अलग अलग विभागों की कार्यप्रणाली विकास योजनाओं की प्रगति जनहित से जुड़ी बातों और विभागीय समन्वय व्यवस्था में विस्तार चर्चा की गई। आयुक्त अधिकारियों को बताणु कि शासन की प्राथमिकताओं के हिसाबल योजनाओं को बखत पे और बढ़िया कार्यकरण पक्कू करी जल जैल आम लोगों को योजनाओं का लाभ प्रभावी रूपल मिल सकल। उन्होंने कानून व्यवस्था को भल बनाई राखण स्वास्थ्य सेवाओं को भल करण वनाग्नि रोकण आपदा प्रबंधन तैयारियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी काजों में विभागीय तालमेल बनाई राखण मिले विशेष जोर दी।
2: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं विभाग हैं वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम उनको पैसा मिला हुआ है तत्काल उसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है तो शीघ्रता से तेजी से काम करें गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किताब अपना पनक विमोचन समारोह में शामिल भई। यो किताब में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दगड़े अलग अलग भूमिकाओं बटी मिलन वाल अनुभवों का सजीव वर्णन कर रखो। किताब में नेतृत्व सेवा सुशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी जरूरी विचारों को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर रखो। श्री धामिल किताब प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री को बधाई दी और ये कु समाजक लिजी प्रेरणादायी बता।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: चमोली जिले में आपदा थे प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी। जिलाधिकारी गौरव कुमारल बता कि ज्योतिर्मठ आपदा थे प्रभावित नगर में पुनर्निर्माण और भूदशाओं सुरक्षा काम झट कराई जानी जै लोगों को द्योग बखत की परेशानी नहीं हो। सिंचाई विभाग द्वारा अलकनंदा नदी में सुरक्षा दीवार निर्माण काम ले झट करी जानो। जिलाधिकारी कह की उड़ वाली यात्रा मौसम में हेलंग मारवाड़ी बाईपास ले बड़बेर तैयार है जल।
4: देखिए, दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बीआरओ के द्वारा की जा रही है, उसमें मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जा

0: अभी श्रोता किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार रोंगदगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को नई तकनीकी तय करी जानो और जात मजबूत। अब टीवी स्क्रीन में दिखल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय

0: एक हेलंग मारवाड़ी इनका बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है, वहां तक के बीच के रास्ते में जो लैंड स्लाइड प्रोन जोन है, वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था, उसकी रोकथाम के लिए पीडीएनए द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क, साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, वो भी पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
1: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अलमाड़क योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में 21 मई बटी 21 जून एक मैणक आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। यो क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए एक मैण तले विशेष निःशुल्क योग शिविर आयोजित करी जा रो। छात्राओं को रोज सामान्य योगाभ्यासक दगड़ दगड़े अलग अलग रोगों को उपचारक लीजिए, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आसन, भुजंगासन जस यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराई जानो। योग विज्ञान विभाग प्रधान योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी बता कि योग शिविरों के माध्यम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ना संदेश ले दी जानो।
2: नमामि गंगे व सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलता आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं। जहां केवल अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जहां के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ, हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
1: वे छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्याल को कि योग शिविर अलग अलग यौगिक क्रियाओं को जानने के बाद वो और लोगों को ले ये एक बार में जागरूक कराल।
3: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
4: हमारे वहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है, जिससे कई सारे रोग नष्ट होते हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
1: पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन द्वारा चंडनर प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करी गई, जमें 48 नांतिनोल उत्साहपूर्वक भाग ले। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशील बता कि स्क्रीनिंग परीक्षा का उद्देश्य नांतिनों की शैक्षणिक क्षमता को आगबेर उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की भल तैयारी के लिए मार्गदर्शन दीन छु। उन्होंने कहा कि इस प्रकार परीक्षाओं के माध्यम नांतिनों की तैयारी का मूल्यांकन करी जा, जैल उनको अपनी कमजोरियों को पछाड़ने और भविष्य की तैयारियों को और भर बनुण में सहायता मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को नई तकनीकी तय करी जानो और जात मजबूत। अब टीवी स्क्रीन में ले दिखल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामों प्रभावी संचालन को निबेर बैठक आयोजन। चमोली जिलम आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में अलमड़ में एक मैणक आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रसार भारती ऐप, न्यूज ऑन AIR, FM बैंड 100.8 MHz पर। श्रोताओं, संध्या के 7:40 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम।

मेरी जंग। फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आपने आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध यह गीत सुना। प्रोग्राम में अब लीजिए पेश खिदमत है ईमानदार फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में।

अनु मलिक और आशा भोसले की आवाजों में मर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और अब आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में अनंत बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है मिलन।

0: मुकेश के गाए मिलन फिल्म के इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, पेश है सबरस कार्यक्रम।
1: गुलाम हम भी थे, नहा के खून में तुम्हारे दर्द में हम चमन बर्द, और उसके बाद ये पूछें कौन

सबरस प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था आबिदा परवीन के गाए इस कलाम से, और कलाम था अहमद फराज और अख्तर शिरानी का। सबरस प्रोग्राम में अब लीजिए पेश खिदमत है तलत अजीज की आवाज़ में ये नगमा, शायर हैं हिमायत अली सहर।

हिमायत अली सहर का कलाम अभी आप सुन रहे थे। फनकार थे तलत अजीज और अब सबरस प्रोग्राम में डीजीपी खिदमत है साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में ये नगमा।

अभिजीत के गाए नुसरत बद्र के इसी नगमे के साथ सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में फिर आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियार पन्नीर सेल्वम ने रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। तो शुरू करते हैं।

0: आज के कार्यक्रम को कुश्ती के दाव पेचों के साथ, जहां वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। जानते हैं आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहुंचकर तिरंगा लहराया।
1: मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई 1 अब्दिस आमतोव को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की येरखान अबिल को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 92 किलोग्राम कैटेगरी में पुनीत कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वे फाइनल में किर्गिस्तान के उलुगबेक सोरोनबेकोव के हाथों 12-1 से हार गए। 125 किलोग्राम वर्ग में लकी को भी रजत पदक मिला, जबकि सचिन मोर ने 86 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के बोबुरवेक रजम्बोएव को 4-1 से परास्त कर कांस्य पदक जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि लगातार वियतनाम में भारतीय पहलवानों का दबदबा जारी है। और अब कुश्ती की रिंग के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। लीग के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और आज पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 3 विकेट खोकर 115 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आप सभी जानते हैं कि इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता के साथ एक और मौका मिलेगा फाइनल के लिए अंतिम दांवपेच लगाने का। आईपीएल के एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे और दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश के लिए अपने जोर आजमाते नजर आएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं दोनों टीमों की तैयारियों का आकलन करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले का विजेता आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगा। अगर दोनों टीम के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो एसआरएच लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर थी, जिसमें टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते थे। वहीं आरआर 14 मुकाबलों में से 8 में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो हैदराबाद का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार बाजी हैदराबाद ने मारी है, जबकि 9 बार राजस्थान के हाथों जीत लगी है। वहीं इस सीजन के दोनों मुकाबलों में राजस्थान को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो हैदराबाद की मुख्य ताकत उसकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से इस सीजन में खूब धूम मचाई है। क्लासन अब तक इस सीजन में 606, ईशान किशन 569 और अभिषेक शर्मा 563 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा मध्यक्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर है, जिनको हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स को सबसे अधिक उम्मीद अपने एक्स फैक्टर युवा वैभव सूर्यवंशी से होगी। वैभव इस सीजन में अब तक 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी वैभव का भरपूर साथ देते आए हैं। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में टीम को इस सलामी जोड़ी से बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमेयर और अनुभवी रविंद्र जडेजा से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के गेंदबाजी क्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब तक इस सीजन में 21 विकेट झटक चुके हैं, जिनको इस मैदान पर रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे से भरपूर साथ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर सबकी नजरें होंगी, जो मजबूत बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो लीग राउंड के बाद अब आईपीएल तैयार है नॉकआउट के अपने जलवे के लिए, जहां पर देखना होगा कि कल वैभव जीत का सूर्योदय करते हैं या फिर हैदराबाद जीत का अभिषेक करता हुआ नजर आएगा। और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं चेस के काले सफेद खानों के बीच चली जा रही

0: चालों में, जहां राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पनीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक जीता, जबकि ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उधर नॉर्वे में नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई, जहां आर प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने अपने मुकाबलों को ड्रॉ के साथ शुरू किया।
1: भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेन जुन को शिकस्त दी। प्रज्ञानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ ट्राई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, जबकि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पे फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। महिला टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जुन को दिव्या देशमुख ने ट्राई ब्रेकर में हरा दिया। वहीं बीबी सारा असो बाएबा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर एक खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को मात दी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में भी अपनी चालों के बीच तमाम नतीजे लेकर के आते हुए, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जो आज से शुरू हो गया है। जानते हैं आज प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
2: स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज पांचवी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का अगला मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष डबल्स जोड़ी भी शुरुआती दौर में चेन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ की अमेरिका की जोड़ी को 26-28, 21-15, 21-13 से कर अगले दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली झे हुई और यांग पो स्वान की चीनी ताइपे की जोड़ी तथा ली यू यांग और हुआंग डी की चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ी। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी 65 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 21-11, 14-21, 12-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्नति हुड्डा भी महिला सिंगल्स में टोमोका मियाजाकी के हाथों 14-21, 10-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। महिला डबल्स में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी भी पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिग्स की जोड़ी से हारकर बाहर हो गईं। अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम भी चांग चिंग हुई और यांग चिंग टुन की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने पुरुष डबल्स में भारत के हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को हराया, जबकि मिक्स डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे पहले दौर के मुकाबले में यांग पो हन और हु लिंग फांग की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जहां इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डोमिलिनर ने कॉन्स्टेंटिन फ्रेंडजेन और रॉबिन हस की जोड़ी को 6-3, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में आर्यन सबालेंका का मुकाबला जैसिका के बीच रहा, जिसमें आर्यना ने 6-4, 6-2 से बाजी मारी। भारत के यूकी भावरी और माइकल वीनस की जोड़ी अब से कुछ देर बाद टेनिस कोर्ट में नजर आएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। ये खेल 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 114 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। श्री मांडविया ने विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों का हिस्सा होगा।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है, फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: ये थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कल समाप्त हो गई। सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
4: प्लीज स्टार्ट देयर, गुरिंदरवीर सिंह गोज ब्लेजिंग, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, ही ब्लेजेस अवे, दिस इज नॉट फिनिश्ड येट, दैट्स व्हाट ही सेज।
5: गुरविंदर सिंह इस प्रतियोगिता के सबसे चर्चित नाम रहे। गुरविंदर सिंह रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरविंदर की तरह ही अपनी रफ्तार से ऐसा ही एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विशाल टीके ने।
4: So now the first 10 meters, Vishal TK will push himself. Look out for lane number 4 once again, Vishal TK. He's taken that lead out here. It is going to be a national record, 45.12. He's going blazing away. Vishal, Vishal, and Vishal it is who takes it away. 44.98.
5: विशाल दिग्गज एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड टूटा पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, जहां देव मीणा और कुलदीप कुमार ने एक रोमांचक मुकाबले में एक साथ 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने का गौरव प्राप्त किया।
4: And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. It's a national record once again out here at the Birsa Munda Stadium. No emotions, no emotions at all from this boy. Into the runway like a 707. There he goes into the skies and he knows that the national record is his.
5: इन तीनों कीर्तिमानों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में न सिर्फ भारत की बढ़ती हुई धाक को साबित किया है, बल्कि ये बता दिया है कि अब इन खिलाड़ियों की विश्व के कई और स्थापित कीर्तिमानों पर नजर है। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर सट चुकी है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के पोडियम की तरफ। और श्रोताओं, अब समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार

0: समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change.

इंद्रधनुष प्रोग्राम की शुरुआत में श्रोताओं किशोर कुमार और एस जानकी की आवाजों में पाप की दुनिया फिल्म का गीत आपने सुना। और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है माचिस फिल्म से।

और आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत। बोल हसरत जयपुरी के हैं और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के गाए लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 MHz पर FM बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल।

हर मंगलवार की रात 9:30 की तरह इस बार भी आपकी फरमाइशी गजलें लेकर महफिल प्रोग्राम में हाजिर है आपका दोस्त शैलेंद्र टमटा। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में सबसे पहले कीजिए स्वीकार ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और अब आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं ये प्रोग्राम का सबसे पहला फरमान।

मुमताज राशिद का कलाम पंकज दास की आवाज में अभी आपने सुना, और अब आइए आगे बढ़ते हुए महफिल प्रोग्राम में शामिल करते हैं अगला फरमाइशी खत जो हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। भेजने वाले हमारे दोस्त हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं दिनेश ठाकुर की लिखी गजल, फनकार उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। हमारे इन तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं इब्राहिम अश का कलाम, गुलकारा मिताली सिंह।

मिताली सिंह की गई इस गजल के बाद लाला बाजार अल्मोड़ा से हमारे श्रोता हैं मुमताज़ अमान, बाबा फरहान, संजू सामिया, निलोफर, शब्बो और शन्नू। आप सभी की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई ये गजल, शायर हैं इब्राहिम अश्क।

महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए अब प्रोग्राम के आखिर में पेश खिदमत है निदा फाजली का कलाम फनकार तलत अजीज़।

तलत अजीज की गाई निदा फाजली की इसी गजल के साथ अपने दोस्त शैलेंद्र टमटा को आज की महफिल प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

महफिल, अभी आप फरमाइशी गजलों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा।

0: प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
4: धन्यवाद
3: आशीष जी। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
4: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की,
3: जी,
4: तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है,
3: जी।
4: तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
4: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, हाँ, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिमनास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिमनास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिमनास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिमनास्टिक करानी ही करानी है।
3: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
4: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
3: अच्छा।
4: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिमनास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिमनास्टिक हॉल में
3: जी,
4: और मेरे फादर को नहीं पता था। मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
3: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती
4: जी
3: जरूरी होती हैं। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
4: जी,
3: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
4: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
3: अच्छा।
4: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
3: जी
4: उस टाइम पे जूनियर की थी।
3: अच्छा।
4: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
3: अच्छा।
4: वहाँ से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
3: जी,
4: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहाँ गए ट्रेनिंग की और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था,
3: हाँ,
4: 2006 में ये हुआ और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
3: अच्छा।
4: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिमनास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन खेलने का। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
3: बिल्कुल।
4: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
3: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
4: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
3: अच्छा।
4: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने

0: थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए उस समय वो ज़रूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहाँ पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया। बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे। बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज़ आने लगे,
1: क्या बात
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं। बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पर रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज़्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था। तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी। जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला ट्यूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में, उसको खेलने के बाद क्या होता है अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है, शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था। बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहाँ तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ,
0: था,
1: उतनी पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलरिटी
1: में।
0: नहीं थी। लेकिन जब मैं खेल के आया वहाँ से, मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफ़ी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं,
0: हाँ
1: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए
1: पूछना चाह रहा
0: मैं
1: था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा।
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है, जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है।
0: जरूर।
1: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहाँ तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना
1: जी,
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी,
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था
1: जी,
0: और वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज़ है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके डाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी,
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूं जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूं वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
3: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
4: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रोअर थे
3: जी,
4: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
3: जी।
4: और मेरे गुरु भी जिनका आप नाम ले रहे मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
3: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं, भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियाँ क्या हैं?
4: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
3: जी।
4: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होता है, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉट पुट। तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो, ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड

0: किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम, और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ज़्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन, तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
1: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
0: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है, गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए नॉर्मल खिलाड़ियों की तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
1: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
0: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं, तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
1: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
0: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है
1: जी।
0: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था
1: जी जी जी,
0: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत।
1: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है
0: जी,
1: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चुनौतियाँ तो बहुत हैं
1: जी।
0: पहली चीज़ तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज़्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज़ करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए
1: जी। चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका
1: जी,
0: यूरोपियन थ्रोअर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब
1: जी,
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनकी ट्रेनिंग भी, कोच थर्ड था और उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोज़ देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया
1: जी,
0: वो जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं
1: जी जी।
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर हम अपना बेस्ट करके गए, कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि

0: खिलाड़ी का दिन होता है, वो दिन हमारे नहीं थे, नहीं क्वालिफाई कर पाए, कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है
1: जी। चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीज़ों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
0: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है
1: जी,
0: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है
1: जी।
0: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
1: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
0: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा
1: जी।
0: आगे ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था
1: जी,
0: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी, मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
1: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
0: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
1: जी,
0: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को
1: जी,
0: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है
1: जी,
0: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी
1: जी। भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है
1: जी।
0: मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्रकार संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की
6: प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों का शहनाई पर बजाया राग बिहाग। मध्य लय और द्रुतगत तीन ताल में है।

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों से शहनाई पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरीड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price, MAPP, of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।